सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:58 में हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो

0: रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संसार के भौतिक सुख नश्वर हैं, इसलिए सांसारिक भोगों में ना उलझकर एकमात्र परम पिता परमात्मा का स्मरण करना ही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि परमात्मा ही शाश्वत सत्य है।

मन को मोहने वाली मनमोहन की बंशी की एक धुन सुदबुद खो देती है। गोप गोपियां और सभी गाय बछड़े उनकी बंशी की एक सुरलहरी में मुग्ध हो जाते हैं।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने जो भक्ति रचनाएं सुनी उनमें आवाजें थीं लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, अंजलि जैन और राजेश डेविड की। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय है सौभाग्य, आलेख है आचार्य भगवान देव का, वचन है श्री कृष्ण शरद का।
1: एक बार श्री कृष्ण बीमार हुए। उनके कोमल पवित्र शरीर में बुखार से जलन निर्माण हुई। दिन ब दिन बुखार बढ़ता ही गया। अनेक प्रकार की दवा दारू की, लेकिन सब असफल रहीं। ये देखने के बाद माँ यशोदा बड़ी चिंता में पड़ गईं। अंत में श्याम के पास जाकर उसने पूछा, बेटे हमने तो अपनी शक्ति के अनुसार सब इलाज किए, लेकिन एक भी उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। तुम्हारा बुखार तो बढ़ता ही चला जा रहा है। बेटे मैं तो नासमझ बन गई हूँ। तुम तो त्रिलोकपति हो, क्या तुम नहीं बतला सकते हो कि किस उपाय से तुम तंदुरुस्त हो जाओगे? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, माँ मैं तो केवल एक ही उपाय से ठीक हो जाऊंगा। यशोदा ने तुरंत कहा, बेटे अगर ऐसा है तो जल्दी बता दो, मैं जल्दी ही उसे प्राप्त करूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, माँ ऐसा है तो मुझे उस व्यक्ति की चरण धूलि ला दे जो मुझको बहुत चाहता है। वो धूलि मेरे भाल पर लगाने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही आसान है, यशोदा ने कहा, क्योंकि गोकुल के सारे ग्वाले और गोपियां तुम्हें दिलोजान से चाहती हैं। जिसकी तुमने मांग की है वो मैं अभी लाके देती हूँ। फिर यशोदा एक गोपी के घर जाती है। ये गोपी तो श्री कृष्ण से अत्यधिक आत्मिक प्रेम करती थी। यशोदा को देखते ही गोपी प्रसन्न हो जाती है और उसका स्वागत करती है। गोपी यशोदा से कहती है, मैया बताओ मैं तुम्हारी सेवा किस प्रकार कर सकती हूँ। यशोदा सारी कहानी बतलाते हुए उसके पैरों की धूल मांगती है। यशोदा की ये अजीब मांग सुनकर गोपी के मुख के भाव बदल जाते हैं। वो कह उठती है, मैया तुम तो अच्छी तरह जानती हो इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं अपने श्याम से दूर रख दूं। मैं तो अपने श्याम के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात मुझसे नहीं हो सकेगी। हमारे धर्म ग्रंथों में तो साफ लिखा है, भगवान के भाल को भक्त के पैर अथवा पग धूलि का स्पर्श हो तो वो भक्त जरूर नरक में जाएगा। इसलिए मैया ये मैं कभी नहीं करूँगी। यशोदा श्री कृष्ण के चाहक प्रेमिकों के घर घर जाती है, लेकिन वे गोप गोपिकाएं यशोदा से कहती हैं, माँ अगर श्याम हमारा सिर चाहता है तो भी हम बड़ी खुशी से अपने हाथों से अपना सिर काटकर भगवान के चरण कमलों पर रखेंगी, लेकिन वे ऐसा गुनाह करने के लिए तैयार नहीं है जिसकी सजा है नरक। अंत में यशोदा राधा के पास पहुंची। यशोदा ने राधा से भी वही मांग की। राधा ने कहा, माँ मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है श्याम का है। फिर तुम चाहो तो मेरी पग धूलि ले लो या मेरा सिर मुकुट। जब मेरा अपना कुछ नहीं है तो मुझे देने में क्या हानि है। इन सब का स्वामी तो

0: मेरा शाम ही है। यशोदा ने चकित होकर कहा, अरे राधा, तुम जो कहती हो उसका अर्थ भी जानती हो? अरे, जो कोई भक्त अपनी धूली भगवान के माथे पे चढ़ाएगा वो नरक में जाएगा। राधा ने स्थिर भाव से कहा, तो सचमुच मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। अपने श्याम की खातिर अगर मैं नरक में चली जाऊंगी तो भी मुझे खुशी होगी। आप मेरी चरण धूली तुरंत ले सकती हैं। मेरे श्याम अगर ठीक हो जाएंगे तो 100-100 नरकों की यातनाएं भी मैं हंसकर सह लूंगी। राधा के मन के भाव सुनकर यशोदा निःशब्द हो गई। वो एक नजर राधा की ओर देखती रह गई। यशोदा राधा की चरण धूली लेकर घर लौटती हैं। ये दवा मिलते ही श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने मटकों को फोड़ना और प्रसन्नता से मक्खन खाना शुरू कर दिया। अब यशोदा जान गई कि कृष्ण का बुखार भी उसकी एक लीला थी। इसके बाद फिर किसी ने ये सवाल नहीं किया कि कृष्ण राधा को ही अधिक क्यों चाहते हैं।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सौभाग्य विषय पर आलेख। आलेख था आचार्य भगवान देव का, वाचन था अंजू पांगती का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रविंद्र साठे का, संगीत है सतीश भाटिया का।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। स्वर था रविंद्र साठे का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा कैसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7 बजे।

सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे विषय श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत विशेष वार्ता सुनिएगा भारतीय संस्कृति में योग, ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। वार्ताकार राधा कांत शर्मा। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता और पर्यावरण। आलेख और वाचन होगा श्री यतीन्द्र सिंह का।

सुबह 9:30 पर भेंट वार्ता सुनने का विषय होगा नेत्रदान जानकारी एवं सुझाव। वार्ता करेंगे डॉक्टर मोहम्मद सुफियान दानिश, भेंट करेंगे ओपी सिंह। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 10:00। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11:00 प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की, गाने सुहाने। ये कार्यक्रम सुनेगा 11:30 पर। मध्याह्न 12:00 गीत बात और SMS। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे ओम प्रकाश डांगुर।

दोपहर 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक होगा। चर्चा के विषय होंगे संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। दूसरा विषय होगा साइबर अपराध से महिला सुरक्षा। एक विशेष कार्यक्रम भी होगा पोषण और स्वास्थ्य। आलेख होगा डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का। वाचन

होगा प्रिया उपमन्यु और देवराज कृष्ण दीक्षित का। प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। आज की बात में सुनिएगा राजेंद्र सिंह बेदी जयंती से संबंधित बातें। दूसरा विषय होगा सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में सुनिएगा लोक कथा चोर की चतुराई। आलेख होगा अशोक कुमार का, वाचन होगा देवेंद्र कुमार सारस्वत का। समय होगा शाम के 6:15 का। 6:30 पर सुनिएगा संध्या वंदन कार्यक्रम और 6:50 पर कार्यक्रम होगा किसान वाणी।

शाम 7:31 पर शाम सुहानी कार्यक्रम सुनेगा। फिल्म संगीत सुनवाएंगे रात 8:00। 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम है। 9:15 पर सुहानी तराने। रात 10:00 राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण सुनिएगा। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे कार्तिक कुमार का सितार वादन। तबले पर संगत होगी अकबर हुसैन की।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें विषय है कैसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 6 से 8 फुट की ऊंचाई का छप्पर तैयार कर छाया की व्यवस्था करें, ताकि उपयुक्त तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व छाया बनाई रखी जा सके। वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्यारी का आकार लंबाई में 20 से 40 फुट और चौड़ाई में 3 फुट रखा जाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के लिए क्यारी में मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना का अवशेष अथवा सूखी घास या केले के पत्तों के कटे हुए टुकड़ों की 2 इंच मोटी तह के रूप में सबसे पहले बिछावें। इसके बाद इसके ऊपर अब 2 इंच की मोटाई की तह में सूखा हुआ गोबर या कंपोस्ट की खाद बिछाकर पानी का छिड़काव कर गीला कर दें। इस गीली तह पर 1 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट की परत, जिसमें केंचुए भी मिले होते हैं, डाली जाती है अथवा वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। केंचुओं की संख्या 50 केंचुआ प्रति घन मीटर रखी जाती है। इस तीसरी परत पर अथवा केंचुओं की परत पर 4 से 5 दिन पुराना गोबर का खाद या गोबर के साथ पशुओं के नीचे की कड़बी या कुट्टी आदि, जिसे घास फूस पत्तियां आदि मिली हो, उसकी 3 इंच मोटी तय के रूप में बिछा देवें तथा पानी का छिड़काव कर दें। अंत में इस परत पर 12 से 14 इंच मोटाई में गोबर के साथ घास फूस पत्तियों के टुकड़े आदि का कचरा बिछा दिया जाता है, जिससे कि निचली सतह से ऊपरी सतह की ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 फीट हो जाए। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी का छिड़काव किया जाता है। अब इसके ऊपर बोरी या टाट या पुरानी बोरियां बिछाकर ढक देवें तथा नमी बनाए रखने हेतु 2-3 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, ताकि 40% से अधिक नमी बनी रहे। 2 माह के अंदर ही गोबर या कूड़ा करकट व वनस्पति अवशेष आदि वर्मी कंपोस्ट में बदल जाए। केंचुए कार्बनिक पदार्थ को खाना जारी रखेंगे व वर्मी कंपोस्ट का रंग काला होता जाए। चाय की पत्ती जैसी वर्मी कंपोस्ट बोरियों के नीचे तैयार हो जाएगी। पूरा वर्मी कंपोस्ट तैयार होने पर केंचुए ढेर की ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ढेर का काला रंग होना, चाय की पत्ती के रूप में बदलना व केंचुओं का ऊपरी सतह पर आना वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का सूचक। 120 घन फुट के ढेर से प्रथम 2 माह में 10 क्विंटल यानी 1 टन वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट से केचुए अलग करने के लिए 3-4 फीट अथवा इससे अधिक ऊंचा वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएं तथा पानी छिड़कना बंद कर दें और बोरियां भी हटा लें। जो ढेर

0: होता जाएगा, केंचुए नमी की तरफ नीचे की सतह में चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद अधिकांश केंचुए नीचे चले जाएंगे और ऊपर वर्मी कंपोस्ट रह जाएगा। इसे ऊपर से इकट्ठा करने में नीचे की सतह पर वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए रह जाएंगे, जिन्हें पुनः वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लें। वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए नहीं जाने देवें, अन्यथा खेत में डालने पर वो मर जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट से केंचुआ अलग करते समय ढेर के नीचे के 1/10 भाग को बचाकर केंचुए सहित वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने वाले जीवांश पदार्थ पर डालें। इसमें कोकून व अंडे आदि भी रहते हैं। 8 नंबर की जाली का बड़ा छल्ला लगाकर भी केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जा सकता है। अलग की गई वर्मी कंपोस्ट व केंचुओं को बची कंपोस्ट बनाने में पुनः उपयोग करें। तैयार वर्मी कंपोस्ट को अलग इकट्ठा करें व आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था कैसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्यैः शंघाई सहयोग संघटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते 6ष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्। अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परंपराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, अर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अद्य शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। गोष्ठ्यामस्यां हरित ऊर्जा क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा पूर्वोत्तर राज्येषु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनानां विस्तारं कर्तुं गभीरा चर्चा समजायत। मन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यानि प्राप्तुं पूर्ण प्रतिबद्धतया कार्यं विदधाति। केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहयोगेन जल प्रबन्धनस्य लक्ष्यानि प्राप्तुमद्य जल

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार का गाया प्यासा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं रानी रूपमती फिल्म से, आवाज़ है मुकेश की। गीत को लिखा है भरत व्यास ने और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। अगला गीत आह फिल्म से गाया है मुकेश ने, गीत शैलेंद्र का है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: के समाचार। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेल खंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेल खंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
1: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक मजबूत समृद्ध और विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को चिप निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद कल नई दिल्ली में मसौदा सूची को जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। कौशाम्बी के पुरामफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर

0: रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि घायलों के उपचार, राहत और बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल बहराइच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड से वाराणसी सिटी विशेष रेलगाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों की आवाजाही अधिक आसान होगी और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई।
2: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी, जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे गंगा के किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है। उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
3: जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है जिसकी वजह से जौनपुर और चंदौली में कक्षा 8 तक के विद्यालयों को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे

0: दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।

भैया यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, विषय श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा, आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी को, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे रूपक माला के अंतर्गत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार प्रस्तुत है रूपक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का है, संयोजक हैं श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता रामकिशोर त्रिपाठी।

हाँ, मैं हूं इतिहास पुरुष, समय का साक्षी, विश्व के उत्थान पतन का सृजनहार, निर्माण और विनाश की लहरों पर खेलने वाला नाविक। परंतु मैं उनको प्रणाम करता हूं जो मेरा भी निर्माण करते हैं। काल से परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वयं श्री कृष्ण।

अब से 5000 वर्ष पूर्व वे भादों की अंधेरी रात में इसी मथुरा में क्रूर कंस के कारागार में जन्मे थे।

0: जुन, जुन, आठवें बालक का जुन, देवकी, शुभे, चेत करो देवकी।
1: ये हमारा आठवां पुत्र है ना? मेरी कोख से इस रत्न को कंस के हाथों से कैसे भी बचा लीजिए नाथ, कैसे भी बचा लीजिए।
0: हाँ देवकी,
1: क्रूर इसका भी वध कर डालेगा।
2: ये तो वसुदेव है, सिर पर सूप और सूप में एक बालक, इतनी वर्षा, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। हाँ, यही था दृश्य अजन्मा के जन्म का।
3: भगवान का अवतार हुआ था असुरों का विनाश एवं साधुओं का पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।
4: वे गोकुल में पले, ब्रज में लीलाएं की, मथुरा में कंस को मारा, द्वारिका बसाई, महाभारत के महानायक बने, गीता का उपदेश दिया, भारी युद्ध हुआ।
3: धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी बड़ा महंगा मूल्य देना पड़ता है।
4: जी हाँ, महाभारत में भी वही हुआ।
3: जीवन का कर्तव्य पूर्ण कर अंततः श्री कृष्ण भी अपने धाम चले गए।

0: मथुरा में श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का राज्याभिषेक किया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की आज्ञा से श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थान पर भव्य स्मारक बनवाए। श्री कृष्ण के जन्म स्थान अत्यंत प्रभावी मंदिर का प्रथम निर्माण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया।
1: इस अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। नाम रखा गया केशव देव।
2: केशव अर्थात सुंदर और घुंघराले लंबे केश पाश वाले श्री कृष्ण।
1: केशव विष्णु का भी नाम है। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार ही तो थे।
2: स्कंद, वायु, पद्म आदि पुराणों में बार बार केशव का नाम स्मरण किया गया है।
1: वाराह पुराण में कहा गया है, न केशव समो देवः न माथुर समो द्विजः।
2: केशव देव के मंदिर के कारण मथुरा के इस क्षेत्र का नाम केशवपुरा हो गया, जिसे यूनानी लेखकों ने क्लीसोवोरा भी लिखा है।
1: श्री कृष्ण मंदिर के आकर्षण के कारण अनेक बौद्ध स्तूपों एवं जैन स्मारकों का निर्माण भी केशवपुरा में हुआ, जिनके प्रचुर भग्नावशेष यहाँ प्राप्त होते हैं।
2: भारत के धर्मों की सहिष्णुता प्रसिद्ध है ही, यही समन्वय की भावना भारतीय जीवन दृष्टि है।
1: मथुरा में शक और कुषाण जैसे विदेशी शासक भी हुए, परंतु वो भी भारतीय धर्मों के साथ समरस हो गए।
2: जी, समरस हो गए। शक राजा सोडाश या सुदास का शासनकाल ईसा पूर्व 80 से ईसा पूर्व 57 तक का था।
1: प्राचीन प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके समय में वसु नामक किसी श्रद्धालु ने इस भव्य मंदिर के तोरण का निर्माण करवाया था।
2: अनेक राजवंशों का शासन यहाँ होता रहा, परंतु केशव देव मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली गई।
1: तभी उदय हुआ महाप्रतापी गुप्त वंश का। इसी वंश के नर रत्न समुद्रगुप्त ने प्रायः समस्त भारत पर अपना अधिकार कर लिया था।
2: और समुद्रगुप्त के प्रतापी पुत्र चंद्रगुप्त ने शत्रुओं को खदेड़कर राष्ट्र को समृद्ध कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
1: महाराजाधिराज परम भागवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनका विरुद्ध था, और वो थे भी महान निर्माता।
2: प्रसिद्ध पुरातत्वविद कनिंघम को यहीं कटरा केशव देव से सन 1853 में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व पुरुषों के नाम एवं चंद्रगुप्त द्वारा किसी विशिष्ट कार्य किए जाने का संकेत मिलता है।
1: प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर अवश्य ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वो देवस्थान अत्यंत विशाल एवं कला का उत्कृष्ट उदाहरण था।
2: युगों से चला आया केशव देव का मंदिर पुनः सभी दृष्टियों से सुनिर्मित और संपन्न होकर भक्ति का केंद्र बन गया।
3: केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम
4: कृष्ण केशव।
0: भारत भर के भक्तों की श्रद्धा का केंद्र केशव देव का मंदिर अपने आकार प्रकार गौरव एवं धन धान्य में वृद्धिगत होता गया। इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई। यहां निर्माण हंस खेल रहा था, परंतु दूर से विनाश की क्रूर दृष्टि भी इस पर लगी थी। भारत के पड़ोस में गजनी नामक स्थान के महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका नवा आक्रमण सन 1017 ईस्वी में मथुरा के इसी मंदिर को लक्ष्य कर किया गया। वो एक आंधी थी। इतिहास है क्या? निर्माण विनाश का ये अनंत इतिहास काल के अमित चक्र पर हंसता रोता हास, सृष्टि का दुर्निवार क्रम, उत्थान पतन ये संस्कृतियों का खेल, संहार सृजन यह जगती का वैशिष्ट्य। हा तो निर्माण की सहस्त्राब्दियों के बाद विनाश का यह बवंडर अब मथुरा की ओर

जीवन का कभी अंत नहीं होता, उसका पुनःसृजन होता है। महाप्रस्थान पर जाने से पूर्व अर्जुन ने ही

0: बढ़ रहा था।
1: इस आंधी की बाढ़ को रोकने के लिए मथुरा का यादव राजा कूलचंद्र सामने आया। भारी युद्ध हुआ
2: और युद्ध के बाद पराजित हो गया राजा कूलचंद्र।
1: अपनी ही कटार को पहले उसने अपनी रानी, तत्पश्चात स्वयं अपने सीने में फोंक कर बलिदान दिया।
2: इस विजय से सुल्तान को 185 हाथी और बहुमूल्य सामग्री हाथ लगी।
1: अब सुल्तान युगों युगों से पूजित सर्वोत्तम श्रद्धा के केंद्र भगवान केशव देव के मंदिर के सामने था।
2: महमूद गजनबी के मीर मुंशी अल उतवी ने अपनी पुस्तक तारीख यामनी में लिखा है,
1: इस शहर में सुल्तान ने निहायत उम्दा ढंग की बनी हुई एक इमारत देखी, जिसे स्थानीय लोगों ने मनुष्यों की रचना न बताकर देवताओं की कृति बताया।
2: शहर के बीचों बीच सभी मंदिरों से ऊंचा एवं सुंदर एक मंदिर था, जिसका पूरा वर्णन न तो चित्र बनाकर और न लेखनी द्वारा किया जा सकता है।
1: स्वयं सुल्तान ने इस मंदिर के सामने खड़े होकर कहा,
2: यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की इमारत बनाना चाहे तो उसे 10 करोड़ की दीनार से कम नहीं खर्च करने पड़ेंगे और उसके निर्माण में 200 से अधिक वर्ष लगेंगे, चाहे उसमें बहुत ही योग्य तथा अनुभवी कारीगरों को ही क्यों न लगा दिया जाए।
1: कितने भव्य और महान रहे होंगे ये मंदिर, जो हिंसा में भी करुणा पैदा कर सकते थे।
2: परंतु आंधी तो अंधी होती है, दूसरे ही क्षण सभी मंदिर धराशायी कर दिए गए।
1: लगातार 20 दिनों तक भारी लूटपाट होती रही।
2: विदेशी इतिहासकारों के वर्णन का सार ग्रहण कर पुरातत्वविद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं,
1: 20 दिन की लूटपाट में 5 सोने की प्रतिमाएं मिली, जिनमें माणिक्य की आंखें जड़ी हुई थी। उनका मूल्य 50,000 दीनार था। उन्हीं के शब्दों में,
2: एक और सोने की मूर्ति मिली जिसका वजन 98,300 मिशकल यानी 14 मन था, तथा उसमें करीब 1.5 सेर वजन का नीलम जड़ा हुआ था। चांदी की 100 भारी भारी मूर्तियां 100 ऊंटों पर लाद कर ले जाई जा सकी।
1: लुटेरों को लगा था कि उन्हें कुबेर का खजाना ही मिल गया।
2: इस लूट का वर्णन इतिहासकार अल बदायूनी और फरिश्ताने भी किया है।
0: विनाश की आंधी आई और चली गई, लोगों के हृदयों में पीड़ा और कसक छोड़ गई। ठीक ही कहा, जब जब होता जन्मोत्सव लोग मनाने आते, वे रोते आहें भरते अपने अश्रु बहाते। कृष्ण का जन्मदिवस देश को प्रेरणा देता, सभी के हृदय में सृजन कुलबुला रहा था, निर्माण जागने लगा था। कन्नौज के वीर और भक्त राजा विजयपाल देव उस समय मथुरा के शासक थे। उन्होंने केशव देव के मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके एक अधिकारी जज या यज्ञ की देखरेख में सन 1050 ईस्वी में एक भव्य मंदिर का निर्माण कृष्ण जन्म स्थान पर कराया गया। एक प्राचीन प्राप्त शिलालेख से ये प्रमाणित होता है कि जज की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति इस मंदिर की व्यवस्था करती थी। डॉक्टर वूलर ने इस शिलालेख का संपादन एपिग्राफिका इंडिका की पहली जिल्द में किया है।
1: विजयपाल देव द्वारा निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध हुआ।
2: दूर दूर से आने वाले भक्त लोग श्री केशव देव जी के दर्शन कर फूले नहीं समाते हैं।
1: सन 1515 ईस्वी में इस भव्य मंदिर में स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव ने आकर दर्शन किया था।
2: चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला खंड में बंगला के कवि कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने लिखा है।

केशव देव के मंदिर में प्रभाविष्ट होकर श्री चैतन्य ने उद्दाम संकीर्तन किया। मंदिर की ओर से उन्हें प्रसाद की माला पहनाई गई।

0: मैं इतिहास हूँ, निर्माण के सुख से मेरा परिचय है। उसमें भावना का ज्वार होता है और होता है जीवन का उत्साह। परंतु विनाश की आंधी इसे नहीं सह सकती। सन 1515 और 1517 के बीच सिकंदर लोदी की दृष्टि में जन्मभूमि का यह उत्साह कांटे जैसा खटकने लगा। फिर एक प्रभंजन बहा, तूफान गहरा उठा। शायद दिल्ली आगरे के बीच जो कुछ था सुनसान हो गया, निर्माण फिर विनाश में बदल गया। मेरा अनुभव है कि विनाश भी समय पाकर विनष्ट हो जाता है। लोदी वंश स्वयं अतीत के गर्त में खो गया, उसके स्थान पर आया मुगल वंश। इस वंश में सम्राट अकबर की उदारता ने हृदयों को जोड़ने का कार्य किया। वो सम्राट फकीरों और संतों से चर्चा करता था, भले ही उसका दीन इलाही न चल पाया हो। परंतु उसके समय में वृंदावन एवं ब्रज के अनेक स्थलों में भव्य मंदिरों का निर्माण श्रद्धालुओं द्वारा कराया गया। भक्ति के गान चारों ओर गूंजने लगे।
1: परंतु श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अभी केशव देव जी का मंदिर पुनर्निर्मित नहीं हो पाया था।
2: ये कार्य किया जहांगीर के मित्र ओरछा के वीर और तानी एवं भक्त राजा वीर सिंह देव ने।
1: लोकेंद्र ब्रजोत्सव ग्रंथ के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी रविवार विक्रम संवत 1675 अर्थात 1618 ईस्वी में वीर सिंह देव ने एक साथ 52 स्थानों पर धर्मार्थ निर्माण कार्य प्रारंभ किए।
2: इससे पूर्व वो सन 1614 ईस्वी में विश्राम घाट पर अपने वजन के बराबर स्वर्ण दान कर चुका था तथा 81 मन सोना धर्मार्थ कार्यों के लिए संकलित कर चुका था।
1: इन निर्माण कार्यों में मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर केशव राय के मंदिर का कार्य सर्वोपरि था।
2: ईस्वी सन 1623 में ये मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया।
1: सम्राट अकबर ने कुछ समय पूर्व 30 लाख रुपए व्यय करके आगरे का किला बनवाया था, जबकि वीर सिंह देव ने केशव देव के इस मंदिर पर 33 लाख रुपए व्यय किए थे।
2: इसी से मंदिर की विशालता और भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है।
1: सन 1650 में एक फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर मथुरा आया। उसने 35 साल पहले बने इस मंदिर की विशालता एवं भव्यता की अत्यधिक प्रशंसा की है। कुछ अंश।
2: जगन्नाथ और बनारस के मंदिरों के बाद मथुरा का मंदिर अधिक विख्यात है। ये मंदिर भारत भर के उत्कृष्ट मंदिरों में से एक मंदिर है।
1: ये इतना विशाल है कि 5-6 कोस की दूरी से दिखाई पड़ता है। मंदिर की इमारत बहुत ही ऊंची और भव्य है।
2: मंदिर एक बड़े अटपहल चबूतरे पर बना हुआ है। चबूतरे के चारों ओर की दीवारों पर कामदार पत्थर लगे हैं और चौतरफा 2 पंक्तियों में अनेक तरह के जानवरों और बंदरों की मूर्तियां उकेरी हुई है।
1: मंदिर चबूतरे के आधे भाग पर है, शेष आधा भाग मंदिर के सामने एक विस्तृत चौक के रूप में खुला है।
2: तीनों शिखरों में नीचे से ऊपर तक जगह जगह 5-6 फुट ऊंची खिड़कियां हैं, जिनमें से प्रत्येक के सामने इतने चौड़े छज्जे लगे हैं कि उन पर 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक छज्जे के ऊपर एक छोटा चंदोवा बना हुआ है।
1: छज्जों को थामने के लिए उनके नीचे 4-4 या 8-8 जोड़ीदार खम्भे एक दूसरे को छूते हुए बनाए गए हैं।
2: शिखरों के चारों ओर भी आले बने हैं जिनमें दानवों की मूर्तियां भरी पड़ी हैं।
1: ट्रेवर्नियर ने लिखा है, दरवाजे से मैंने भीतर की ओर देखा कि कोई 15-16 फीट की दूरी पर एक चौकोर चौकी है, जिस पर सोने चांदी के काम वाला पुराना वस्त्र बिछा था और उसके ऊपर बड़ी मूर्ति थी जिसे राम

0: राम कहते हैं। इस मूर्ति का केवल सिर दिखलाई पड़ता था, जो बड़े काले संगमरमर का बना था, और उसकी आंखों की जगह दो लाल मणियां जड़ी हुई थी।
1: बड़ी मूर्ति के दोनों ओर एक एक और मूर्ति थी, जो ऊंचाई में लगभग 2 फुट थी।
0: टेवर्नियर द्वारा लिखा गया केशव देव मंदिर का वर्णन काफी बड़ा और प्रभावी है।
1: एक दूसरे यात्री बर्नियर ने भी इस मंदिर की भव्यता का उल्लेख किया है।
0: इटली के यात्री मनुची ने भी लिखा है,
1: मंदिर का स्वर्ण आच्छादित शिखर इतना ऊंचा है कि 18 कोस की दूरी आगरे से भी दिखाई देता है। जन्माष्टमी के दिन इस पर जो प्रकाश किया जाता है, उसे आगरा से बादशाह देखा करते हैं।
0: कृष्ण जन्मभूमि पर बना ये मंदिर अत्यंत भव्य था। साथ ही इसके प्रति न केवल हिंदुओं की बल्कि मुसलमानों की भी आदर की भावना थी।
1: शाहजहां के पुत्र और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस मंदिर में पत्थर का जालीदार एक कटहरा भी भेंट किया।
2: इतनी भव्यता, इतना सौंदर्य और इतिहास को जीतने का इतना भव्य अरमान, परंतु विनाश को यह कैसे भा सकता था? वो अट्टहास कर रहा था औरंगजेब द्वारा नियुक्त मथुरा के फौजदार ने इस मंदिर को पुनः ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, मंदिर के चबूतरे में बाहरी भाग पर एक मस्जिद का निर्माण भी करा दिया। पुराना मंदिर इतिहास के गर्त में विलीन हो गया। हां, जहां तहां उसके अवशेष अब भी दिखाई देते हैं। इतिहास तो आगे बढ़ता है।
0: ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1815 ईस्वी में समूचे कटरा केशव देव को नीलाम कर दिया, जिसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद लिया।
1: कटरा केशव देव के जीर्णोद्धार की कामना राजा पटनी बल की भी थी, परंतु वे इसे पूरा नहीं कर सके।
0: महामाना मदन मोहन मालवीय जी एवं हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे देशभक्तों की इच्छा अनुसार 7 फरवरी 1944 को धर्म प्राण उद्योगपतियों ने इस भूमि को खरीद कर 27 फरवरी सन 1951 को इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दिया।
1: प्राचीन खंडहर पड़ी भूमि पर क्रमशः निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
0: श्री कृष्ण जन्म स्थान पर केशव देव मंदिर की प्रतिष्ठा की गई, जिसका उद्घाटन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सन 1958 में किया।
1: श्री कृष्ण चबूतरे के नीचे प्राचीन गर्भगृह का पता चला, जो जमीन में छिपा एक कमरा था। उसकी प्राचीन दीवारें और एक और सिंहासन सिद्ध कर रहे थे कि इसी कमरे में वसुदेव देव की बंदी थे और यही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।
0: आज गर्भगृह एक दर्शनीय स्थल है। प्राचीन सिंहासन पर बाल कृष्ण की प्रतिमा विराजित है।
1: इस परिसर में भागवत भवन के निर्माण का संकल्प सर्वाधिक महत्व का है।
0: योजना तो बनाई गई थी कि यहाँ एक ऐसे भव्य मंदिर भवन का निर्माण हो जिसका शिखर 250 फीट ऊंचा हो,
1: परंतु प्राचीन स्मारकों के नीचे दबे होने के कारण जब दीवारें धसकने लगती तो निर्णय किया गया कि इसका शिखर 130 फीट ऊंचा ही रखा जाए।
0: भागवत भवन का शिलान्यास सन 1965 में किया गया और ये अनेक वर्षों में पूर्ण हुआ।
1: कृष्ण जन्म स्थान पर ये सर्वाधिक भव्य निर्माण है। 100 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची भव्य सीढ़ियां, 60 फीट ऊंचा सभा मंडप, बीच में मुख्य मंदिर, इसकी अनेक मंजिलें, अनेक शिखर, सभी श्वेत संगमरमर के बने हुए हैं और अनोखा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं।
0: मंदिर के मुख्य भाग में श्री राधा कृष्ण की 6 फीट ऊंची भव्य मूर्तियां हैं, जिनका नियमित श्रृंगार, राग भोग, सेवा व्यवस्था का प्रबंध है।
1: मंदिर में अन्य अनेक देवताओं और ऋषियों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं।
0: भागवत भवन नाम को सार्थक करता इसकी दीवारों पर 635 ताम्र पत्रों पर श्रीमद् भागवत को उत्कीर्ण करके लगाया गया है।
1: केशव देव मंदिर के परिसर में विशाल लीला मंच, पुस्तकालय, आयुर्वेद भवन, शिक्षा संस्थान, कार्यालय, वाटिका, फब्बारे आदि स्थापित हैं।
0: मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य है, जहां रथ पर अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा है
1: और मुख्य द्वार पर द्वारपालों की विराट मूर्तियां भी स्थापित हैं।

0: इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अतिथिशाला है, जिसमें देश एवं विदेशों से आए यात्री कम व्यय में सुविधापूर्वक ठहर सकते हैं।
1: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, विषय श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई

0: नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
2: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
3: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
3: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
5: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
6: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है। आईएनएस

0: निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्रेय घोषाल, मीका सिंह और अमन त्रिखा को फिल्म ओह माय गॉड फिल्म में।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जयदीप साहनी के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी सलीम सुलेमान ने, आवाज थी राहत फतेह अली खां की और फिल्म का नाम था आजा नच लें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दामिनी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। बोल लिखे थे समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हिंदी वार्ता के अंतर्गत विशेष वार्ता, भारतीय संस्कृति में योग, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। वार्ताकार हैं राधा कांत शर्मा।
1: भारतीय संस्कृति में पूजित दशावतारों में आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनका जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी विश्व के प्रत्येक कोने कोने में समस्त सनातन धर्मावलंबी अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में मथुरा के अत्यंत क्रूर व अत्याचारी राजा कंस के कारागार में आज से लगभग 5253 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 8 बजे माता देवकी के गर्भ से हुआ था। द्वापर युग में सप्तपुरियों में श्रेष्ठ मधुपुरी अर्थात मथुरा की दिव्य भूमि पर जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के अवतार षोड़श कलायुक्त भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना गया है। उनके अवतार का प्रमुख कारण कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराना था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लेने के पश्चात अपनी त्रोधान लीला के 120 वर्षों में अनेक लीलाएं की। उन्होंने अपने संपूर्ण लीला काल में समाज को विभिन्न रीति नीति, कला व्यवहार आदि का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बहुआयामी है। वह कभी बाल रूप में नंदरानी यशोदा को मातृत्व सुख प्रदान करते हैं तो कभी ग्वाल बालों के साथ उनके सखा के रूप में लीलाएं करते हुए राक्षसों का वध करते हैं। कभी वह यमुना में स्नान करती गोपियों को शिक्षा देते हैं तो कभी कुरुक्षेत्र में वीर अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उनके सांसारिक मोह को भंग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई महाराज लीला उनके कृष्णावतार की सबसे श्रेष्ठतम लीला है। उन्होंने इस लीला के माध्यम से गोपियों के अहंकार और काम के अभिमान को समाप्त कर निष्काम प्रेम को प्रभाषित किया। साथ ही उन्होंने कौरवों व पांडवों के मध्य हुए धर्म अधर्म रूपी 18 दिवसीय महासंग्राम में अर्जुन का रथ खींचकर अर्जुन का साथ दिया। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण जन कल्याण के लिए हुआ था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त कर पुनः धर्म की स्थापना करके भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। उन्होंने अपने युग को नवसृजन की दिशा में मोड़ा, जो कि उनकी भारतीय वैदिक संस्कृति को अनुपम देन है। शास्त्रों में कृष्णावतार को पूर्णावतार माना जाता है, इसीलिए वे जगत गुरु के रूप में सारे संसार के प्रवर्तक हैं। उन्होंने सारी दुनिया को कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने प्राणी मात्र को यह संदेश दिया कि केवल कर्म करना ही व्यक्ति का अधिकार है, फल की इच्छा रखना उसका अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का जीवन भी उतार चढ़ाव से ओतप्रोत है। वे जेल में पैदा हुए, महल में जिए और वन से विदा हुए। उनका यह मानना था कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। उनके द्वारा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का ज्ञान एक ऐसा उपदेश दिया गया जो कर्तव्य से विमुख हो रहे हर व्यक्ति को दिशा व ऊर्जा प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता उनके उपदेश का एक ऐसा दर्शन है जो हमें इस नश्वर संसार में अपना कर्तव्य निष्प्रय भाव से निभाने के लिए प्रेरित करता है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का प्रमुख साधन है। गीता के इस अपूर्व उपदेश के कारण ही वे न केवल अपने समय के अपितु भविष्य में चिरकाल के लिए सारे संसार के गुरु बन गए। उनका पृथ्वी पर प्राकट सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए हुआ था, इसीलिए वे लोकनायक व राष्ट्रनायक दोनों ही हैं। वह लीला पुरुषोत्तम हैं, जन जन के आराध्य हैं, इसीलिए उनका चरित्र लोकरंजक है। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी कार्य कौतुक या निरर्थक नहीं है। उनमें वैराग्य योग, ज्ञान योग, ऐश्वर्य योग, धर्म योग और कर्म योग आदि समाहित हैं। उनकी प्रासंगिकता आज भी है। विद्वानों ने उन्हें महान नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, कुशल योद्धा, गौपालक, अहिंसा धर्मी, निर्भीक, राजनीतिज्ञ, सहनशील, लोकहित चिंतक, सामाजिक न्याय धर्मी, वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक, निर्लोभी, विनयशील, महामानव, संगठनकर्ता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, अनुसंधानक, गणितज्ञ, व्यूहरचनाधर्मी, सच्चा मित्र, समाजशास्त्री, अध्यात्मवेत्ता, सर्वपालक राजा, आर्यधर्मी और आप्त पुरुष आदि माना है। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त

चोर पुलिस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था निदा फाजली ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है।

विश्व को प्रेम व सहिष्णुता का संदेश दिया। उनकी लीलाओं में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दृष्टिगत होता है। ब्रजमंडल श्री कृष्ण उपासना का प्रमुख केंद्र है। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अन्य स्थानों की अपेक्षा अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ब्रज में इस पर्व की धूम अद्भुत व अनूठी होती है, जो कि श्री कृष्ण की छठी पूजने तक निरंतर जारी रहती है। इस दौरान यहाँ के प्रायः सभी मंदिरों में विशेष मनोरथों के आयोजन होते हैं। साथ ही यहाँ कृष्ण भक्ति का रस सर्वत्र बरसता रहता है, जिससे यहाँ के सभी मंदिर देवालय कृष्णमय हो जाते हैं। ब्रज में इस पर्व पर जो वात्सल्यमय वातावरण दिखाई देता है, उसकी अन्यत्र कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर ब्रज के प्रत्येक मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को सायंकाल यशोदा महारानी का सीरा पूड़ी व रसीले पदार्थों से भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में घर आंगन से लेकर गली मोहल्लों तक को दुल्हन की भांति सजाया जाता है। घर घर में अनेकानेक व्यंजन व पकवान बनते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सुबह से ही अधिकांश घरों में भक्त श्रद्धालु व्रत रखते हैं। घर घर में धनिया की पंजीरी व पंचामृत बनाया जाता है। सारे दिन भजन कीर्तन के कार्यक्रम चलते हैं। रात्रि को 12 बजते ही यहाँ के प्रमुख मंदिरों व घरों में शंख, घंटे, घड़ियाल आदि की ध्वनि गूंजने लगती है। सभी कृष्ण भक्त अपने अपने घरों में ठाकुर विग्रहों का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रमुख उत्सव मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में होता है। यहाँ देश विदेश से आए असंख्य भक्त श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्म के भजनों को गाते हैं और यह कह कहकर नाच उठते हैं, नंद के या नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। इसके अलावा ब्रज के अन्य मंदिरों में भी ठाकुर जी के नैनाभिराम श्रृंगार होते हैं, साथ ही उनके जन्म की खुशी में नौबत बजाई जाती है। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वर्ष भर में केवल एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही प्रातःकाल अन्य मंदिरों की तरह मंगला आरती होती है। इस दिन समूचे ब्रज में दिवाली जैसी धूम रहती है। इसके अलावा गोवर्धन में असंख्य भक्त श्रद्धालु अति उत्साह के साथ श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए श्री गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। जगह जगह श्रीमद् भागवत के दशम अध्याय की कथा होती है, जिसमें कि श्री कृष्ण के जन्म एवं लीलाओं का वर्णन है। विभिन्न रास मंडलियां भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला का मंचन अत्यंत धूमधाम के साथ करती हैं। नंदगांव में श्री कृष्ण जन्म बधाई उत्सव रक्षाबंधन से ही शुरू हो जाता है, जिसमें बधाई गायन व नृत्य आदि होते हैं। वृंदावन स्थित सप्त देवालयों में से तीन देवालयों ठाकुर राधा दामोदर मंदिर, ठाकुर राधा रमण मंदिर एवं ठाकुर राधा गोकुलानंद मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिन में ही मनाई जाती है। इस संबंध में इन मंदिरों के सेवायतों का यह भाव रहता है कि उनके ठाकुर अत्यंत सुकोमल है, अतः उन्हें रात्रि में जगाकर उनका जन्मदिन मनाना उचित नहीं है। राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकाल ठाकुर जी का एवं वहां विराजित गिरिराज शिला का पंचामृत से अत्यंत धूमधाम के साथ विधि विधान से अभिषेक किया जाता है। ठाकुर राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी का अभिषेक रात्रि के स्थान पर दिन में 12 बजे होता है। साथ ही उन्हें नवीन पीत वस्त्र धारण कराकर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। इस दिन इस मंदिर में तिल, पंजीरी और पाक का विशेष भोग लगाया जाता है, साथ ही विशेष उत्सव आरती भी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन समूचे ब्रज मंडल में नंदोत्सव की धूम रहती है। हर एक घर व मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पालने में झुलाया जाता है और बधाइयां गाई जाती हैं। जगह जगह दधिकांधा होता है। सभी कृष्ण भक्त यत्र तत्र फल मेवा, मिष्टान, वस्त्र आदि लुटाते हैं। सभी लोग इसे कान्हा का प्रसाद समझकर लूटते भी हैं। नंदोत्सव का मुख्य आयोजन गोकुल स्थित गोकुलानंद मंदिर में होता है। यहाँ प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण की झांकी अत्यंत धूमधाम के साथ निकाली जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पालने के भी शुभ दर्शन होते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में नंदोत्सव के दिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को चांदी के पालने में झुलाया जाता है। नंदगांव के नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के स्वर्ण पालने में दर्शन होते हैं। इस अवसर पर वर्षानावासी नंदगांव वासियों को श्री कृष्ण जन्म की बधाई देने नंदगांव आते हैं। साथ ही यहां स्थित नंदकुंड नामक सरोवर पर मल्ल युद्ध प्रिय श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी की स्मृति में विशाल दंगल आयोजन होता है, जिसमें देश के अनेक नामी ग्रामी पहलवान भाग लेते हैं। वृंदावन के ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में नंदोत्सव का आनंद महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मंचन होता है।

0: ब्रजवासी बालक मंदिर प्रांगण में होने वाली मटकी फोड़ लीला में भाग लेकर नाना प्रकार की अटखेलियां करते हैं। मंदिर के सेवायतों द्वारा यहां उपस्थित अपार जन समूह में फल मिष्ठान कपड़े व बर्तन आदि लुटाए जाते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल स्वरूप ठाकुर जी को भव्य झूले पर झुलाया जाता है। इस दिन यहाँ खीर का विशेष प्रसाद भी बांटा जाता है। वृंदावन के दक्षिण भारतीय शैली के प्रख्यात रंगलक्ष्मी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव के अगले दिन अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तर भारत में त्योहारों को चंद्रमास के अनुसार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में त्योहारों को सौर मास के अनुसार मनाया जाता है। वस्तुतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रतिवर्ष हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाना तभी सार्थक है जब हमारे हृदय में श्री कृष्ण का उदय हो। इस पर्व के दिन हम सभी को गौ रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, सुदामा चरित्र का गायन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को दिए गए संदेश को आत्मसात करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहिए, श्री गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, साथ ही श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र को अपने जीवन का मूल आधार बनाना चाहिए, जिससे हमारा मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विद्यमान हो जाए और हम सभी उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें।
1: हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता भारतीय संस्कृति में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। वार्ताकार थे राधा कांत शर्मा।

0: की हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
1: महिला बंदियों को आत्मनिर्भर और रोजगार परक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने की कार्यवाही शुरू कराने के निर्देश जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दिए हैं। DM और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन जी जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण करने जेल पहुंचे थे, जहां दोनों अधिकारियों ने बाल बंदी और महिला बंदी बैरक के साथ साथ पाकशाला का निरीक्षण किया और साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता समेत बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बाल बंदी बैरक में बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके अधिवक्ताओं की व्यवस्था की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। बरसात के मौसम को देखते हुए जेल परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और मौसमी तथा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने चीनी की कीमतों और भंडारण की स्थिति पर प्रभावी निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चीनी का अनावश्यक और अत्यधिक भंडारण नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यापारी को एक स्थान पर 30 दिन से ज्यादा अवधि के लिए चीनी का भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। एक ही परिसर में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से स्टॉक पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को अनिवार्य रूप से घोषित करनी होगी। स्टॉक घोषणा के बाद इसकी सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी को भी देनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि आम उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी अथवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश चारा नीति के तहत जिले के गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश को वर्ष भर पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। प्रथम चरण में 10 गौ आश्रय स्थलों से जुड़ी चरागाह भूमि पर नेपियर घास की रोपाई कराई जा रही है। प्रत्येक चयनित गौ आश्रय स्थल की 0.2 हेक्टेयर चरागाह भूमि में नेपियर घास लगाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक गौ आश्रय स्थल को 6000 नेपियर रूट स्टैम्प की निशुल्क आपूर्ति राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र बाबूगढ़ हापुड़ से की गई है। रोपाई और संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक गौ आश्रय स्थल के बैंक खाते में 4000 रुपए की धनराशि भी भेजी गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत जिले में पशुओं का बीमाकरण शुरू हो गया है। 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में सितंबर तक 50,625 पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है।
2: मेरा नाम मलखान है। जो सरकार ने पशु बीमा की योजना चलाई है, ये बहुत ही लाभदायक है किसान के लिए। सरकार ने गांव-गांव प्रचार किया है तो मुझे पता लगा है, और बहुत सारे लोग लाभार्थी भी हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो सरकार का बहुत बहुत आभार।
1: जल जीवन मिशन के तहत खारे पानी और फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जलेसर, सकीट और शीतलपुर विकास खंड के कुल 214 गांवों को नहर आधारित सतही जल स्रोत पेयजल योजना से जोड़ने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है

0: और इससे करीब 4.5 लाख ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आवागमन को बेहतर बनाने और संकरी सड़कों से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 37 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार दोनों मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और कम चौड़ाई के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: अंबेडकर नगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व विधायक धर्मराज निषाद, जिलाधिकारी सप्रिया एवं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने किया। मार्च के दौरान उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बलिदान को नमन किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व जनपद अम्बेडकर नगर में पूरे उत्साह उल्लास एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने एकलव्य स्टेडियम अकबरपुर में ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता हमें असंख्य वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुई है। उनके आदर्शों एवं राष्ट्र सेवा की भावना को आत्मसात करना ही उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है। जिलाधिकारी ईसा प्रिया ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महापुरुषों एवं राष्ट्रनायकों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों, संघर्ष एवं सेवा की भावना को नमन किया। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का उत्सव नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का भी संकल्प है। हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। अंबेडकर नगर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की ई लॉटरी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। इस योजना में कुल 12 लाभार्थियों का चयन किया गया है। अंबेडकर नगर में हथकरघा बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनके पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के अंतर्गत 30 व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों का चयन किया गया है। जिलाधिकारी ईसा प्रिया ने बताया कि इन 30 बुनकरों को प्रथम किस्त के रूप में 27,90,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 20 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। शासनादेश के क्रम में परिक्षेत्र अयोध्या के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के पक्ष में प्रथम किस्त के रूप में कुल 27,90,000 रुपए की धनराशि आहरण एवं वितरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके कार्य को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना है, जिससे बुनकरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शिव बाबा धाम में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद में विभिन्न विकास खंडों एवं नगर निकायों से आए 292 जोड़ों का विवाह उनकी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत सम्पन्न कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अम्बेडकर नगर के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 926 विवाहों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 292 कन्याओं का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर कुल 1,00,000 की धनराशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। सावन के महीने में अम्बेडकर नगर में काफी धूम रही। कांवड़ लेकर निकले शिवभक्तों से सड़कें गुलजार रही। शिवभक्तों को कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। शिव बाबा टांडा के झारखंडी महादेवा मंदिर और महादेवा घाट पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने जलाभिषेक। अंबेडकर नगर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, उनका तिलक किया। स्कूली छात्राओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, डीएम ईसा प्रिया और मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला सहित कई अधिकारियों के कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा का लाभ महिलाओं ने उठाया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के

0: एक क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
1: आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता और पर्यावरण। आलेख और वाचन है श्री यतीन्द्र सिंह का।

श्रोताओं, अगर देश की अर्थव्यवस्था सालाना 6% की दर से विकसित होती है तो वर्ष 2050 में इसका आकार मौजूदा आकार से 10 गुना बड़ा होगा। संसाधनों की उत्पादकता में अगर सालाना 2% की बढ़ोतरी का अनुमान लेकर चला जाए तो समूची अर्थव्यवस्था की प्रवाह क्षमता में 5 गुना का इजाफा होगा। वहीं मौजूदा अनुमानों को आधार मानकर चलें तो वर्ष 2010 से 2030 के बीच प्राथमिक ऊर्जा की खपत में 3 गुना इजाफा होने की संभावना है। श्रोताओं, प्रदूषण और संसाधनों का दबाव किसी अर्थव्यवस्था में समूचे संसाधनों और ऊर्जा के प्रवाह से सीधे संबंधित होता है और इसीलिए वह भी अपने मौजूदा आकार से 5 गुना तक बड़ा होगा। भौगोलिक रूप से भी वह अधिक संकेंद्रित होगा क्योंकि शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। यह देखते हुए कि हमें पहले ही पर्यावरण और संसाधनों के स्तर पर बड़े दबावों का सामना करना पड़ रहा है, यह संभावना धुंधली ही नजर आती है कि इन दबावों से निपटना भी विकास के समान ही महत्व रखता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से ही देश के योजनाकारों ने मरुस्थलों, शुष्क इलाकों और पहाड़ों आदि पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए संबद्ध योजनाओं की शुरुआत की है और 70 के दशक के बाद से परियोजनाओं के प्रदूषण प्रबंधन और पर्यावरण प्रभाव आकलन का काम शुरू किया गया। इसमें काफी ध्यान ग्रामीण इलाकों में जमीन के अपक्षरण, जल जमाव, पानी के खारेपन और जैव विविधता में कमी पर भी दिया गया। हमें एक स्वतंत्र सांविधिक पर्यावरण प्राधिकार की आवश्यकता है जो प्रदूषण और उससे जुड़े जोखिम से निपटने में हमारी मदद कर सके। इसके अलावा हमें राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को भी साथ लाने की आवश्यकता है। अदालतों के मुताबिक सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार हमारे जीवन के मूलभूत अधिकारों का हिस्सा है। श्रोताओं, अगर हम संसाधनों की बात करें तो दो बड़े मसले हैं, स्वच्छ जल और वन। देश में बारिश की कोई कमी नहीं है, हालांकि यह साल में सीमित समय के दौरान होती है और उसका स्तर भी देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण तथा औद्योगिकरण की बढ़ती मांग के साथ जल संसाधनों की मांग भी बढ़ जाएगी। ऐसे में दुर्लभ हो रहे जल संसाधनों के लिए संघर्ष आम हो जाएगा और अंतर्राज्यीय तनावों तथा आपूर्ति को लेकर आपसी दुश्मनियों की वजह बनेगा। ऐसे में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसी परियोजनाओं के साथ हम समस्या में और अधिक इजाफा कर रहे हैं क्योंकि उससे कुछ शुष्क इलाकों में शहरी आबादी का तेज गति से विस्तार होगा। पानी की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए हमें जल संरक्षण पर बहुत ज्यादा जोर देना होगा। इसके अलावा हमें वन संरक्षण के मोर्चे पर भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार देश के 9 बड़े कोयला क्षेत्रों का 35% इलाका घने वनों से आच्छादित है और उसका वर्गीकरण आवागमन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में किया जाना चाहिए। अब हमें वन संरक्षण और कोयला खनन के बीच सामंजस्य बनाना होगा, अन्यथा खनन क्षेत्रों में भी ऐसी ही समस्याएं आने लगेंगी। हमारे वन कानूनों की सख्ती को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों के बीच का टकराव और उसके साथ ही खनिज उत्खनन भी एक जटिल समस्या में रूपांतरित हो रहा है। शायद घनी आबादी वाले अन्य देशों की तरह हमें भी खनिज तथा ऐसे अन्य संसाधनों का आयात करना पड़ेगा। भारत को वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव का सामना भी करना होगा। 40 साल पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि जमीन, पानी, हवा और वन्य जीवन में बढ़ोतरी करना हर पीढ़ी की जवाबदेही है। श्रोताओं, हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके इस समस्या को कम करने में अपना

योगदान दे सकते हैं, जैसे कि हम पानी का संरक्षण करें, पानी को व्यर्थ ना होने दें, हम बिजली का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, तो हम भी पर्यावरण और संसाधन की इस विकट समस्या को हल करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

0: कार्यक्रम आबो हवा में अभी आप सुन रहे थे संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता और पर्यावरण इस विषय पर आलेख। आलेख और वचन था श्री यतीन्द्र सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है भेंटवार्ता, विषय है नेत्रदान जानकारी एवं सुझाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान दानिश, इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, दुनिया कैसी लगती है ये हम अपनी आंखों से देखते हैं तब उसको जानते हैं। दुनिया की रंगीनी अगर आंखें न बता पाएं तो शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे। कल्पना करें ऐसे लोगों की जिनके पास दृष्टि नहीं है, देख नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारण बस अपनी नज़र खो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में आने से पहले उनकी नज़रें नहीं थी। तो शायद इसीलिए जब साइंस ने प्रगति की, विज्ञान ने प्रगति की, तो अंग दान की बात हुई और अंग दान में सबसे पहले हमने आँखों को दान होते हुए देखा। तो नेत्र दान, महादान शायद इसीलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दुनिया देखने के लिए अगर हम कुछ योगदान कर पाएँ, अपने जाने के बाद भी अगर जिंदा रहना चाहते हैं इस दुनिया में तो शायद आँखें दे करके जाएँ, तो ये सबसे बड़ा काम होता है। नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है और इस नेत्रदान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, कौन हमारी मदद कर सकता है, कैसे इसकी ओथ लेते हैं, परिवार के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, तो ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ सुफियान दानिश साहब हैं, वरिष्ठ नेत्र रोग सर्जन हैं और कल्याणम करोती में आप काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार सर
1: जी। बताइए कि ये जो नेत्रदान से जुड़ा हुआ एक संकल्प है, कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो पूरा कैसे हो सकता है, बताइए थोड़ा सा खोल के कि नेत्रदान दरअसल है क्या।
2: पहले तो नेत्रदान किस चीज़ को बोलते हैं, लोग नेत्र से आँखों का कौन सा भाग समझते हैं, पूरी आँखों का दान होता है या उसमें से कुछ भाग का दान होता है, ये समझना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। और इससे जुड़ी कुछ अंधविश्वास जो लोगों के दिमाग में भरी हुई हैं, कुरूपता, अगले जन्म में अंधता हो जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे नेत्रदान का मतलब होता क्या है। इसमें आँख में जो छठा भाग है आगे का, पुतली बोलते हैं उसे, सिर्फ उसका दान लिया जाता है, उसका दान किया जाता है बेसिकली। उसमें हम लोग जो इंसान जिसने प्लेज किया है, जिसने शपथ ली है कि वो नेत्रदान करेगा, उसकी मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर हमें वो आँखों में जो पुतली होती है, पुतली वाला भाग निकालना होता है। अगर हम उससे ज़्यादा देरी करते हैं तो वो आँखों की जो प्रादर्शी पुतली है वो ख़राब हो जाती है
1: जी।
2: अब इसको, शपथ को आप पहले भी ले सकते हैं, आपके परिवार से आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वो भी वॉलंटरीली दान के लिए बोल सकते हैं, हॉस्पिटल में बोल सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जो सिर्फ नेत्रदान पे ही काम करते हैं, जिनके पास आई बैंक्स हैं, वहाँ पे आप नेत्रदान के लिए प्लेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं, आपके परिवार से कोई भी एक बंदा उसको आगे फॉरवर्ड करवा सकता है आपकी मृत्यु के बाद।
1: यानी नेत्र दान अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले कि जिस व्यक्ति ने विलिंग ली है, क्योंकि वो तो उस समय नहीं होगा, तो उसके नियर एंड डियर्स हैं जो परिवार के लोग हैं, मुझे लगता है उनका जो योगदान है या उनका जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब जा रहा होता है तो हॉस्पिटल को तो नहीं पता, एनजीओ को तो नहीं पता, वो लोग ही इसमें फिर उसके संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आएंगे और उनकी जो इच्छा शक्ति है या उनकी जो विलिंगनेस उस समय है वो ज्यादा

0: महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें।
1: जी सर, उसमें परिवार का एकजुट होके रहना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर जब व्यक्ति ने अब पहले ही शपथ ले रखी हो, तो इसमें मुझे लगता है परिवार का कर्तव्य है कि
0: कि
1: मृतक इंसान की जो
0: इच्छा
1: इच्छा
0: पूर्ति।
1: थी वो
0: हाँ
1: पूरी होनी चाहिए।
0: जी जी
1: जी,
0: जी
1: दूसरा नेत्रदान से क्या क्या, पहले तो ये नेत्रदान कौन कर सकते हैं, क्या इसके अंदर वो हैं इंट्रिकेसीज हैं, क्या बीमारी में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मृत्यु
0: जी
1: कैसे हुई थी उसमें इसका क्या रोल रहेगा। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति पैदा होने से लेके मृत्यु चाहे 70, 80, 90, 100 साल का भी हो कर सकता है। भारत सरकार ने इसको फुल्ली अलाउ कर रखा है। जो पुतली हम लोग आँखों से निकालते हैं वो दूसरे इंसान जिसकी दोनों पुतलियाँ ख़राब हैं वो उसमें एक आँख में पुतली डालते हैं, वो जो एज ग्रुप है जिसका हम नेत्रदान एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं वो करीबन 4 साल से लेके 80 साल से पहले पहले तक का है। अगर इसके ऊपर और उसके नीचे के मरीज होते हैं तो उनकी पुतली पे फिर शोध के लिए वो पुतलियाँ इस्तेमाल होती हैं
0: जी
1: आगे के
0: जी
1: रिसर्च के लिए। अब वो नेत्रदान करने से फ़ायदा क्या है, इसके बारे में पहले हम इस बात पे चर्चा कर लें कि जो पुतली की बीमारियाँ होती हैं वो मोतियाबिंद और चश्मे के बाद दूसरे नंबर पे हैं हिंदुस्तान में। करीबन 8 से 10% लोग सिर्फ अंधता के शिकार इसलिए हैं क्योंकि उनकी पुतली में कभी चोट लग गई या कभी कोई बीमारी की वजह से पुतली सफ़ेद पड़ गई तो उनको दिखना बंद हो गया, या फिर पैदाइशी उनकी पुतली ख़राब थी और वो कभी रोशनी डेवलप ही नहीं कर पाए। पुतली एक आगे का प्रादर्शी भाग होता है जिसका जो मोटाई होती है वो करीबन 500 माइक्रोन होती है, 500 से 700 माइक्रोन, और ये करीबन 10 से 11 mm के डायमेंशन की होती है, दोनों साइड में सर्कुलर होती है। एक पुतली से अगर कोई इंसान अपने नेत्रदान करता है तो उस दान की वजह से जो रोशनी लोगों में आ सकती है वो करीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 हैं, मतलब 4 लोगों को आप रोशनी दे सकते हो। अगर मान लीजिए 4 लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों आंखों की पुतलियां ख़राब हैं तो अगर एक एक आंख को हम जोड़ा जाए तो एक इंसान के अंदर आधी पुतली से कार्य हो जाता है, बीमारी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो
0: जी जी
1: मैक्सिमम 4 लोग रोशनी पा सकते हैं और मिनिमम करीबन 2 लोग।
0: जी
1: अब पुतली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें पुतली की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। चोट लग
0: चोट लग
1: गई,
0: जाती है
1: चोट
0: काम
1: लग गई,
0: करते हुए।
1: पस
0: जी
1: पड़ गया, खेती में काम कर रहे थे तो कोई
0: इन्फेक्शन हो
1: इन्फेक्शन
0: गया।
1: हो गया, भैंस से दूध निकाल रहे थे तो पूंछ लग गई आँख में, ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो हम लोग डे टू डे मरीजों को मेडिकल में अपने हॉस्पिटल
0: कुछ
1: में
0: नहीं है
1: देखते
0: तो
1: हैं।
0: जैसे कर रहे हैं, मिट्टी चली गई
1: जी,
0: उसको मल लिया,
1: मल लिया तो
0: मिट्टी में
1: इन्फेक्शन हो गया।
0: इन्फेक्शन है
1: जी,
0: तो।
1: तो ऐसी स्थिति में जब पस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो आधी पुतली से ज़्यादा कवर कर जाता है तो हमें वो पुतली को चेंज करना होता है, अदरवाइज आगे जाके उसके भविष्य में, उस बीमारी के भविष्य में हमें आँख की सफाई तक की नौबत आ जाती है। अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल पर एक जगह पे अगर हम उस पुतली को निकाल के सही प्रादर्शी पुतली जिसने किसी ने दान किया हो लगा दें तो उस इंसान की एक तो आँख बच ही जाती है, दूसरा उसको दिखना भी शुरू हो जाता है करीबन 1.5 से 2 महीने बाद। तो नेत्रदान इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, अगर कोई इंसान किसी को चोट लग गई है मान लीजिए तो, और उसकी पुतली में पस बना और आगे जाके वो पस बनने की वजह से आंखों में सफ़ेदी आ गई जिसको ग्रामीण क्षेत्र में लोग फुली आना बोलते
0: फुलिया
1: हैं,
0: जी।
1: जी, तो उस स्थिति में भी इंसान को दिखता नहीं है और वो इस इंसान को दिख नहीं रहा, और कोई उस इंसान की आंख में अगर प्रादर्शी पुतली दोबारा से डाल दे तो उसकी जो डे टू डे जिंदगी है, जो अभी जिंदगी चल रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। पुतली के दान की वजह से वो अपना चलना फिरना पूरा कर पाता है, दूसरों पे डिपेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है कि कोई एक बंदा उसको पकड़ के खाना खिला रहा है या शौचालय ले जा रहा है तो वो सारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। इसलिए नेत्रदान को महादान बोलते हैं
0: जी
1: कि वो
0: जी
1: सिर्फ और सिर्फ आप वो उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर रहा, उसके पूरे घर पे जो उसकी परेशानियां हैं कि एक आदमी का रोजगार रुका हुआ है, वो एक आदमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको चलाए फिराए खाना खिलाए,
0: चलाए
1: वो डिपेंडेंसी चली जाती
0: तो
1: है
0: पूरा घर की जो गतिविधियां हैं वो
1: वो।
0: ब्लॉक हो जाती हैं
1: जी,
0: और एक तरह से समाज में जो गतिशीलता है उसको हम रोके हुए हैं, वो छोटी सी पुतली दान से
1: बहुत बड़ा
0: पूरे परिवार की खुशियां लौटाती है उसमें। तो अब इसमें जिस व्यक्ति ने प्लेस करनी है, मान लो किसी भी उम्र में हो, तो

0: वो कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे वो बहुत सारे आप जैसे कहा कि एनजीओ काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, जिला अस्पताल है तो, या बहुत सारे आई के भी
1: जी
0: हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाए और स्वेच्छा से कहे कि मुझे दान करना है, वहाँ जाके ये प्लेज
1: हॉस्पिटल,
0: भर दे
1: जी
0: ऐसे।
1: सर, हॉस्पिटल के कार्ड होते हैं जिसमें प्लेज कार्ड बोलते हैं, वो उसमें हॉस्पिटल का नंबर होता है। ये बहुत सारी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। ये आई बैंक बोलते हैं या नेत्र के बैंक होते हैं, जो जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसको निकाल के उसके ऊपर जांच करते हैं कि वो पुतली फिट होती है, तो हम दूसरे इंसान में डालते हैं। तो सर
0: जी
1: वो हमारे अस्पताल में भी है और हमारी तरह ही कई सारे एनजीओज हैं जिसपे आप जाके स्वेच्छा से प्लेज कर सकते हैं।
0: लेकिन जैसे अब मैंने प्लेज की, मैंने भी कर रखा है इसको, लेकिन मैं फिर इसको अपने परिवार वालों को बताऊं कि
1: जी
0: मैंने इस
1: सर,
0: तरह का संकल्प लिया है,
1: जी सर,
0: ये मेरी अंतिम इच्छा होगी
1: जी
0: कि जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ूं, चाहे समय से छोड़ूं या असमय छोड़ूं, किसी कारण से छोड़ूं, तो इसमें उस समय फिर परिवार वाला व्यक्ति
1: बहुत ज़्यादा
0: अगर
1: महत्वपूर्ण
0: जानकारी
1: है।
0: है तो उनका एक तरह से एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इसमें।
1: हाँ जी सर,
0: तो वो क्या करें, वो उस हॉस्पिटल को जब
1: वो
0: रिंग करेंगे।
1: हॉस्पिटल को 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर उनको कॉल करनी है। अगर आई बैंक तक पुतली पहुंचने में 4 से 6 घंटे से ऊपर का टाइम लगता है तो पुतली में उतनी जान नहीं रह जाती। जब इंसान की मृत्यु होती है तो 6 से 8 घंटे का टाइम माना जाता है जिसमें पुतली जिंदा रहती है सर। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लेट करते हो तो जो एक्चुअली प्रादर्शी पुतली है वो सफ़ेद पड़नी शुरू हो जाती है, फिर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर उस पर हम शोध कर सकते हैं, उससे किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते, किसी
0: फायदा
1: मरीज
0: है
1: को
0: वो जो
1: फ़ायदा नहीं दे सकते।
0: रोशनी देने वाली बात
1: जी
0: है वो नहीं
1: जी
0: होती। अच्छा, इसमें जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं उस समय,
1: जी
0: असमय होता है, अचानक होता है, व्यक्ति सबसे पहले इमरजेंसी में जिस भी हॉस्पिटल में जाता है वहाँ है, तो वहाँ जो इस तरह के इमरजेंसी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इस तरह की सुविधाएं रहती है, व्यक्ति जाए कहे कि भाई ये मेरे परिवार का व्यक्ति है, इसने ऐसे किया हुआ है, कि बाकी सारी गतिविधियाँ, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि हर आदमी परेशान भी होता है, हैरान भी होता है, और उसकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है,
1: जी
0: अब उस समय उसके संकल्प को पूरा करना होता है, तो बताने मात्र से ये चीज़ें फिर वो लोग हॉस्पिटल वाले कॉपरेट करते हैं उसमें।
1: बहुत कोऑपरेट करते हैं सर। हमारे हॉस्पिटल से भी कई कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो इस तरह की जगह पे
0: वो फिर
1: मौज
0: जैसे आपका जैसे आई हॉस्पिटल है, फुल
1: जी
0: फ्लैश आई के लिए, तो
1: जी
0: वहाँ वो खबर करेंगे कि भाई यहाँ सुविधा नहीं है तो आप आइए
1: वो
0: करिए।
1: खबर आपको आना और जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर टाइम या तो मॉर्चरी में रहते हैं या इमरजेंसी में रहते हैं और इस तरह के लोगों को ध्यान रखते हैं जिनको पहले से स्वेच्छा से जिन्होंने ये बोल रखा हो कि उनको नेत्रदान करना है, या फिर उनको काउंसिल करते हैं कि सर जैसे
0: आप देना
1: अकस्मात
0: चाहें।
1: डेथ हो चुकी है, अकस्मात मृत्यु हो गई है और वो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इससे किसी को फ़ायदा होगा। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग इसको एक्टिव काउंसलिंग द्वारा नेत्रदान को प्रमोट करना बोलते हैं। इसको SCRP भी बोला जाता है, हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, यहाँ पे सारी चीज़ों का सुविधा रहती है जिसमें NGOs और आई बैंक के जो लोग होते हैं वो पहले से ही मौजूद होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम मानसिक संतुलन इतना नॉर्मल नहीं रहता जितना घर पे रहता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे वो काउंसलर्स काम करते
0: काम
1: हैं।
0: करते हैं वो,
1: जी
0: आपको धीरज भी बताएंगे और वो जो जो काम है एक्चुअल वो भी
1: वो भी
0: करेंगे।
1: समझाएंगे। जी
0: आपने दो तीन चीज़ों का शुरुआत में इस्तेमाल किया था कि एक तो मिथ कि आज हम अगर आंख दान कर देंगे तो अगले उसमें पता नहीं क्या होगा, तो एक इस पे, और दूसरा ऐसी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जहां अगर कोई व्यक्ति उनसे ग्रसित है तो वो दान नहीं कर सकता, ऐसा है क्या कुछ?
1: हाँ सर, तो इस तरह की स्थिति में जब भी हम किसी से नेत्रदान लेते हैं तो करीबन 5 ml का ब्लड सैंपल भी जाता है संग के संग, ताकि ये देखने के लिए कि ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी अगर मरीज के अंदर है तो हम कोशिश करते हैं कि फिर हम वो दूसरे इंसान के आँख में पुतली को प्रत्यारोपण ना करें। उसका रीज़न ये है कि चांसेस बहुत रेयर है कि मतलब कोई बीमारी एक से दूसरे में जाए, लेकिन है। तो अगर हमारे पास थोड़ा भी ये रहता है कि इसमें रिस्क है, कि इस
0: हाँ, तो
1: पुतली का प्रत्यारोपण से रिस्क है, तो हम नहीं करेंगे,
0: फिर वो रिसर्च के काम
1: वो फिर
0: आएगी।
1: रिसर्च के काम आएगी सर। दूसरा, पुतली एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसका कहना गया है इसमें कोई खून की एक बूंद भी नहीं रहती। पुतली एक भगवान ने एक ऐसा हिस्सा बनाया है जो कि एकदम मार्वल है, आप ऐसे बोलिए, वो एक ऐसा शीशा है जो लगातार काम करता रहता है, उसके अंदर एक सेल्स हैं जो उसको एकदम प्रादर्शिक रखने में बहुत काम करते हैं सर। तो अगर उसमें थोड़ा भी ऊंच नीच होती है, अगर कोई टेक्नीशियन ऐसा है जिसने उसको

0: सही से हैंडल नहीं किया तो पुतली ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सपर्ट हैंडलिंग ऑफ टिश्यू बोलते हैं, कि मतलब कोई एक एक्सपर्ट बंदा ही टिश्यू को रिट्रीव
1: उस
0: करे,
1: काम
0: तो
1: को कर
0: उस काम को
1: सकता
0: करे जी। 99% ये डॉक्टर्स करते हैं और 1% कुछ एनजीओज ने अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रखा है ताकि
1: वो भी कर
0: वो
1: सकते हैं।
0: प्रतिरोपण करने वाली
1: मथुरा
0: पुतली को निकाल
1: जैसे शहर
0: सकें।
1: में ये सुविधा है, आप ये कह
0: बिल्कुल
1: सकते
0: सर,
1: हैं।
0: कल्याणम करोती में अभी हमने ये सुविधा स्टार्ट करने के लिए बात करी है और आने वाले दिनों में भगवान की कृपा रही तो वहाँ पे भी पुतली का प्रतिरोपण शुरू हो जाएगा।
1: बाकी जैसे जिला अस्पताल है, आई
0: जी
1: श्रॉफ है, और
0: जी
1: जो बड़े आई के वो है, तो
0: जिला
1: वहाँ
0: अस्पताल में सर यहाँ पे तो अभी पुतली का प्रतिरोपण नहीं हो रहा, श्रॉफ आई में होता है अगर इमरजेंसी होती है तो,
1: तो
0: हाँ वहाँ पे होता है। वहाँ पे भी वहाँ पे उनका जो पुतली का सर्जन है वो हफ्ते में एक बार आते हैं, देखते हैं कोई इमरजेंसी है तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं।
1: काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता भी है। और अगर हम डाटा पे जाएं तो मुझे लगता है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी रोशनी
0: जी
1: के इंतजार में
0: जी
1: हैं, लेकिन लाखों लोग जा भी रहे हैं। एक समाज में कितने आपको लगता है कि अभी बहुत जागरूकता की जरूरत है? बहुत आसान काम है, लेकिन हम शायद छोटी सी इच्छा अगर हम कर लें तो बहुत सारे लोग जो इंतजार में खड़े हैं, दुनिया रोशन हो जाए उनकी, किया जा सकता है इसको?
0: बिल्कुल सर, किया जा सकता है इसमें सर। जागरूकता से अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है कि अगर हम पुतली से इंसान के आंख निकाल दी जाए तो कुरूपता आएगी पहली बात। तो मैं फिर से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें आंख नहीं निकाली
1: पूरी
0: जाती,
1: आंख नहीं निकालते,
0: नहीं।
1: बस वो
0: सो वो
1: सफेद।
0: काला वाला भाग जो आप बाहर से देखते हो वो
1: हाँ
0: काला वाला भाग एक्चुअली प्रादर्शी भाग है, जिसको हम पुतली भी बोलते हैं, आंखों का हीरा भी बोलते हैं और आंखों का शीशा भी बोलते हैं, वो वाला भाग निकाला जाता है तो उससे कोई कुरूपता नहीं आती। दूसरा इसमें ये बोला जाता है कि अगले जन्म में मनुष्य अंधा पैदा होता है। मेरे नॉलेज में किसी भी धर्म में पुण्य का काम कभी खराब नहीं हो
1: खराब
0: सकता
1: नहीं
0: और इससे
1: सर।
0: बड़ा पुण्य का काम कुछ है नहीं कि आपके शरीर के अंग के द्वारा जो कि आपकी मृत्यु के बाद भी काम कर रहा है और उससे किसी को फायदा हो रहा है, उससे आपको मरने के बाद भी पुण्य ही मिलेगा।
1: और मुझे लगता है सभी धर्मों में इस तरह की कथाएं हैं, ऐसे प्रमाण आते हैं कि जहां लोगों ने अंगदान किए समाज के
0: जी
1: और जन कल्याण के लिए, लोगों ने अपने अंगों के दान किए, तो उस समय किए, तो आज तो मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है
0: तो
1: इस बात
0: ये
1: की है।
0: सबको, हाँ सर, तो इसमें विचारों को थोड़ा खुला रखना बहुत ज़रूरी है
1: हाँ
0: और ये अंधविश्वास रखना कि नहीं पुतली के दान से ऊपर जाके चीज़ें खराब होंगी, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी मृत्यु के बाद भी, और आपके परिवार को भगवान करे उस आपने जो दान किया उससे उनको भी फायदा पहुंचेगा।
1: जी। अब इसमें जैसे समाज के जो जागरूक लोग हैं, आप जैसे हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, आप कहते रहते हैं, सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, सुविधाएं भी दे रही है, और भारत सरकार ने इसको, आपने जैसा कहा कि परमिट कर रखा है कि आप नेत्रदान कर सकते हैं, उसमें अभी कहाँ लैक है? मतलब चीजें हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है? अभी ये थोड़े से अंधविश्वास तो है, लेकिन
0: जी
1: अभी आपको नहीं लगता कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है जो मोटिवेट कर सकता है लोगों को, आगे आ सकता है, वो भी अभी इतनी विल नहीं दिखा रहा है इसमें?
0: उसका सर एक जो मेजर कारण है, जो बड़ा कारण है वो ये है कि लोग जागरूकता तो है ही है, जागरूकता तो हम लगातार कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब थी, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, लोगों ने दान करना ज़्यादा चालू कर दिया है जिससे जो मरीज जिनको पुतली की बीमारी उनको फायदा होने लगा है। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि किसी ने प्लेज किया, मान लीजिए किसी ने शपथ ली, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसके परिवार वाले हैं वो उस एक्स्ट्रा बर्डन की तरह देखते
1: हाँ,
0: हैं
1: उनको
0: कि
1: लगता है अब ये
0: अब ये काम
1: क्या,
0: क्यों
1: हाँ कि
0: करेंगे।
1: काम जैसा लगता है उनको ये, जबकि
0: हाँ
1: ये काम नहीं है,
0: ये
1: ये
0: एक
1: एक
0: बहुत बड़ा
1: बड़ा,
0: पुण्य पुण्य की
1: हाँ
0: चीज है जिसको मुझे लगता है कि मृत इंसान की श्रद्धांजलि में वो करना चाहिए। जितना इस बात को बोला जाए, जितना इस बात को लोगों तक
1: बार
0: पहुंचाया
1: बार
0: जाए,
1: कहा जाए।
0: बार बार सुनाया जाए, उतना बेहतर है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको लगे कभी कि ये खास कोई फायदे का काम नहीं है, हमारे अस्पताल आइए, यहाँ पे हजारों मरीज ऐसे होते हैं जो पुतली की
1: इंतजार
0: वजह
1: कर
0: से
1: रहे
0: चल
1: हैं।
0: नहीं पा रहे, गेट से अंदर तक नहीं पहुँच पा रहे। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका पुतली का प्रत्यारोपण हो गया, वो रोते हुए अंदर आते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया 7 साल बाद 10 साल बाद देखी कि अब अच्छा डॉक्टर साहब अब हमें दिखना शुरू हुआ है, अब हम चल फिर पाते हैं, मैंने तो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। तो वो दृश्य देख

0: के समझ में आता है कि ये कितना ज्यादा
1: किसी
0: जरूरी
1: जिसने
0: है,
1: वो पुतली दी उसने कितना बड़ा
0: बड़ा पुण्य का
1: काम किया। ये उस व्यक्ति की भावना और उसके भाव देख के पता लगता है जिसको वो पुतली लगाई गई
0: जी
1: हो
0: जी
1: इसमें। तो क्या चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जो हम आपकी बात को सुन रहे हैं कि भाई इसमें सिर्फ इसको काम न समझें, इसको एक दो दिन की या एक दो फोन की ऐसा ना समझे कि कहाँ से झंझट आ गया।
0: जी
1: अगर ऐसा मौका मिल रहा है आपको, सूचना दे सकते हैं, खबर पहुंचा सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को जागरूक कर सकते हैं, या आपके परिवार के आसपास लोग कहीं समझा सकते हैं, तो इसमें सबका योगदान सहयोग होना चाहिए।
0: हाँ सर, इसमें सभी का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान ना करे कभी किसी को पुतली के प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़े, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अगर किसी ने शपथ ली हुई है और आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते, तो भगवान ना करे ऐसा ना हो कि आगे जाके भविष्य में इवन आपको ही ज़रूरत पड़ जाए, आपके परिवार वालों को किसी को ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह की स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आप मृत इंसान की इच्छा अगर आप पूरी करते हैं, तो भगवान भी आपको उस बीमारी से बचाएगा।
1: बचाएगा
0: जी, और
1: उसमें।
0: सर दान इतना बड़ा है, मैं फिर से इस बात पे जोर दूंगा, एक बार आप आई हॉस्पिटल आके देखिए, जो दृश्य आपको दिखेगा ना, जो मरीज गेट से अंदर तक भी नहीं आ पाता है, और फिर जब उसका पुतली चेंज होके अंदर आता है, वो कैसा बच्चों की तरह बात करता है, वो अलग ही दृश्य होता है। और दूसरा, आप इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समाज पे देखिए कि अगर कोई इंसान किसी पे डिपेंडेंट है और उस पर हम पुतली का प्रत्यारोपण करते हैं और उसको दिखना शुरू हो गया, वो एक इंसान को फ्री करता है जो उसकी सेवा में लगा हुआ है, वो खुद भी अपना काम खुद से करेगा, और हो सकता है अच्छा अगर पुतली का प्रत्यारोपण हुआ हुआ है तो वो खुद भी कमा खा सकता है और समाज को ऊपर उठा सकता है।
1: चलते चलते ऐसे लोग जिनका किसी डैमेज हो गया, चोट लग गई, आपने कहा जैसे गांव में ऐसे दृश्य बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ उस समय ही उसकी नज़र नहीं थी, तो उसमें भी क्या प्रत्यारोपण हो सकता है?
0: हाँ सर, ऐसी स्थिति है जिसमें कंजेनाइटल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, पैदाइशी जन्मजात पुतली सफ़ेद होना भी बोलते हैं। इस तरह की स्थिति में जितना जल्दी हम पुतली का प्रत्यारोपण कर दें उतना बेहतर है, और जन्मजात शिशुओं में भी पुतली का प्रत्यारोपण किया जाता है। आप ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए कि अरे बच्चा है और नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर बीमारी का समाधान है, अगर पीछे का भाग आंखों का पूरा सही है और आप पुतली का प्रत्यारोपण ढंग से कर दें, तो बच्चे की जिंदगी आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी।
1: ऐसे ही एक तरह से कि कैमरा बिल्कुल ठीक है
0: जी,
1: लेकिन
0: शीशा
1: उसका
0: खराब हो गया
1: उसका
0: उसका, तो
1: लेंस
0: आपने
1: खराब है।
0: लेंस आपने जैसे ही चेंज किया, फिर वो कैमरा फिर से शुरू हो जाएगा।
1: तो श्रोता बंधु, बात कर रहे थे नेत्रदान की, बहुत अच्छा काम है, समाज के हित का काम है, व्यक्ति के हित का काम है, और एक ऐसा वो कि भाई कोई व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जा रहा है किसी भी कारण से, अगर हम उसकी दो आंखें, अगर दो पुतलियां दान कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एक व्यक्ति से दो तो कम से कम हो ही सकते हैं, चार की भी आंखें या
0: सही हो
1: रोशनी
0: सकते हैं।
1: हम लौटा सकते हैं। तो इसमें हम सब लोग आए, आगे आए, समझें चीज़ों को, पहले खुद समझें, फिर लोगों में ये अवेयरनेस लाएं, और एक बेहतर दुनिया और एक जागरूक दुनिया और एक रोशन दुनिया बनाने में हमारा जो योगदान हो सकता है उसमें अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब, आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था नेत्रदान, जानकारी एवं सुझाव। वार्ताकार थे डॉक्टर मोहम्मद सुफियान दानिश, भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं चंदन दास की गाई ये गजल।

बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

सफ़र फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से, गाया है अनूप जलोटा और लता मंगेशकर ने।

प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म से, आवाज है मोहम्मद अजीज की।

ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परवरिश फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, रश्मि मैडम हूँ आप?
0: जी जी जी,
1: कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: आपकी आवाज, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, आपका फोटो भी
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आज क्या पसंद रहेगी?
1: आने वाली जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गीत गाता चल आरती मुखर्जी।
0: जी जी,
1: गया काना मिलन का वादा,

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: आगरा से सचिन कुमार बोल रहे हैं।
0: जी स्वागत है सचिन जी, कैसे हैं आप?
1: मैम तो बढ़िया है, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। फोन आप करते रहते हैं कार्यक्रम में?
1: हाँ जी मैम, करते रहते हैं। अब तो हमारी छुट्टी हुई थी, उसके बाद हम मिलाए जब से।
0: चलिए, फोन मिला इसके लिए बधाई और फरमाइश, तो अब हम पूरी कर ही देंगे आपकी। क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम हम तेरा नाम फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि इतना प्यार करते तुमको सनम।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: और आज कोई गीत याद है या नहीं?
1: चलिए थोड़े अगले एपिसोड में सुनाएंगे। हाँ
0: चलिए, इस बार आप तैयारी कर लीजिए, अगले एपिसोड में फिर
1: जी
0: आपसे कोई गीत सुनेंगे बढ़िया सा।
1: जी
0: अच्छा चलिए,
1: जी
0: आज

0: से जन्माष्टमी आने वाली है, कृष्ण जी
1: हाँ
0: का कोई भजन कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो गुनगुनाइए।
1: जी जी, तो उनका तो आप सुना देते, हालांकि मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। फिल्म हम साथ साथ हैं से एक प्यारा सा गीत है।
0: हाँ
1: मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, ये वाला प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
0: ठीक है ठीक है, तो आपकी चॉइस यही रहेगी, ये गीत सुनना
1: हाँ जी
0: चाहेंगे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: हाँ जी हाँ
0: चलिए,
1: जी,
0: आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद
1: धन्यवाद।
0: का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है कार्यक्रम में सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बढ़िया है दीदी, और आपसे हमारी बहुत दिनों बाद बातें हो रही, तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, ये तो हमारे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे श्रोताओं से जो लगाव है, हमारे श्रोताओं को हमसे और हमें उनसे, और जब कभी भी अवसर मिलता है तो ये जो भावनाओं का आदान प्रदान है वो हो जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है जब श्रोता हमें याद करते हैं। तो अभी
1: बिल्कुल
0: छिंदवाड़ा में
1: बिल्कुल
0: मौसम कैसा है?
1: दीदी, अभी हमारे यहाँ पे मतलब अभी सुबह से ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है।
0: तो अभी बारिश का अच्छा खासा जो क्रम होना चाहिए वो हुआ है या नहीं, या कभी कभी बारिश आ रही है?
1: नहीं अभी तो दीदी थोड़ी अभी कभी कभी बारिश आ रही है, और बहुत अच्छा लगता है, ठंडक सी रहती है।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं बारिश जल्दी आए और बारिश की बौछारों में आपका तन मन सब भीग जाए और आप प्रसन्न रहें, आनंद चित्त रहें। और क्या
1: जी
0: सुनना चाहेंगे?
1: आप सुनो दीजिए दीदी, फिल्म का नाम है अनाड़ी, और गीत के बोल रहेंगे, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान,
0: ठीक है।
1: और कुछ दोस्तों को याद करना इस गीत में। सबसे पहले तो आपको और हमारे मित्र हैं दीदी, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय भुले जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं दीदी मथुरा वृंदावन से, राजू लवानिया जी है आगरा उत्तर प्रदेश से, और महेंद्र सिंह राणा जी है मथुरा से, और राजन गंगवार जी हैं, और शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी और राजू यादव जी हैं दीदी साथ।
0: चलिए, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
1: बहन जी, मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल सिंह
0: जी। स्वागत है नेत्रपाल जी कार्यक्रम में। और रक्षाबंधन कैसा मना?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए, और अब जन्माष्टमी की क्या तैयारी है?
1: पूरी तैयारी, पूरी पूरी
0: पूरी पूरी।
1: हाँ
0: चलिए, तो क्या बनेगा उस दिन आपके घर में?
1: देखो, पूरी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, हलवा बनेगा।
0: अच्छा, तो व्रत नहीं रखेंगे जन्माष्टमी को?
1: तो रात नहीं करे, वो सब जो बच्चे तो खाएंगे और छोटे छोटे।
0: अच्छा,
1: हम तो खेल व्रत, हम तो खाएंगे करीब 12:30 बजे।
0: अच्छा,
1: अब बच्चे छोटे और भी हैं जो नहीं रखते, वो भी खाएंगे फिर।
0: चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बस आनंदित रहिए और अपना खाते पीते रहिए, प्रसन्नचित रहिए। बताइए क्या सुनेंगे?
1: सर आप सही ठीक है? आप टीम कैसी है?
0: बस हम भी बढ़िया और हमारी टीम भी बढ़िया।
1: रिंगा नाम तो याद नहीं, नाम है बड़ी देर वही डाला तो रात तक भजवाला।
0: ठीक है। हेलो आकाशवाणी।
2: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: दीदी मैं गांव उस पार से ब्रज रेडियो श्रोता मित्र वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: क्या बात है? वीरेंद्र जी स्वागत है कार्यक्रम में, और कैसे हैं आप?
2: दीदी अच्छे हैं, थोड़ा बीमार चल रहे थे दीदी, घर पे ही रेस्ट किया था, डॉक्टर ने बोला था तो रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा परेशानी है मेरे गर्दन में थोड़ा।
0: चलिए बिल्कुल, रेस्ट इज बेस्ट, और बेस्ट आपका संगीत सुनना भी है जब आप रेस्ट पर हो। तो बताइए क्या सुनेंगे?
2: और दीदी हमारी के जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामना हमारी तरफ से।
0: बिल्कुल, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण।
2: दीदी हमें गाना सुनवा दीजिए।
0: बिल्कुल बताइए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम पेश कर रही थी रश्मि शर्मा। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में आपने कश्मीर की कली फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे SH बिहारी ने और धुन तैयार की थी OP नैयर ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम है आराधना। आनंद बख्शी का गीत है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

परसमणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इंदिवर के गीत को संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर का गाया हुआ। अनजान ने गीत लिखा है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था पराया धन। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा आरडी बर्मन ने। और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आपने सुना पत्थर के सनम फिल्म का गीत। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज किसी कारणवश हम आपको व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात और SMS नहीं सुनवा पा रहे, इसका हमें अत्यंत खेद है। आइए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आपने सुना बदलते रिश्ते फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल ने फिर याद किया फिल्म का नगमा। जीएल रावल का गीत है, संगीत सोनिक ओमी का।

फिल्म संगीत का आनंद आप इस समय आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से ले रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। गुलजार का गीत था, संगीत तैयार किया था खयाम ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ब्रह्मचारी फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आपने सुनी नीरज की गीत रचना। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। और लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में पेश है कारवां फिल्म का नगमा, आशा भोंसले की आवाज़ में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत आर डी बर्मन का।

आशा भोसले के गाए कारवां फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश डागुर के गाए कुछ लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: आइए ओम प्रकाश डागुर के ही स्वर में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम में हमारे आज कलाकार हैं ओम प्रकाश डागुर। आइए इन्हीं के स्वर में आपको सुनवाते हैं एक और ब्रज लोकगीत।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश डागुर के गाए कुछ लोकगीत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़

0: रुपए की वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ्स ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

आज संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी, और रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे। इसके अलावा रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा मनी टॉक, और रात्रि 9:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार और साइबर अपराध से महिला सुरक्षा। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण और स्वास्थ्य। आलेख होगा डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का, वाचन स्वर होंगे प्रिया उपमन्यु और देवराज कृष्ण दीक्षित के। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ घरेलू टिप्स और फिल्मी गीत हमारे इसी कार्यक्रम में। दिन में 1:45 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का

अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3 बजे समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर। इसमें सबसे पहले युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। आज कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे राजेंद्र सिंह बेदी जयंती और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। इसके अलावा आप सुनेंगे एक ही फनकार का सफर कार्यक्रम। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रज लोक कथा चोर की चतुराई। आलेख होगा अशोक कुमार का और वाचन स्वर होगा डॉ. देवेंद्र कुमार सारस्वत का। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा संध्या वंदन शाम 6:30 पर।

व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन पाएंगे संध्या 7:31 पर, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:30 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत आप हमारे सुहाने तराने कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कार्तिक कुमार द्वारा सितार पर बजाया राग हमीर केदार और मिश्र गारा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति पर गीत।

मीना और साथियों के स्वर में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे प्रेम धवन। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

छू न सकूं मैं आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं अपनों के दिल को, ये भी तो आसमां से कम नहीं। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूं आप सभी का आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, हमारी सभी की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें सबसे अधिक ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना। इसके लिए आवश्यक है सुबह सबसे पहले गुनगुने पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, साथ में योग, व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार को भी अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें। तो बहनों, संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? बहनों, जिस भोजन में हमारे शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हों वो संतुलित आहार कहलाता है। हमारा शरीर ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है। अपने शरीर की ज़रूरी गतिविधियों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें अपने आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अंकुरित अनाज, दाल, दही, दूध आदि को शामिल करना चाहिए। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा के द्वारा शरीर के विकास के साथ साथ मांसपेशियों से लेकर हमारी

नर्व सेल भी प्रोटीन पर निर्भर है। प्रोटीन की कमी से गठिया, हार्ट की बीमारी, गंजापन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें ताजे फल और सब्जियों से ज़रूरी विटामिन, मिनरल और खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। विटामिन सही मात्रा में लेने पर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। दूध और अन्य डेयरी उत्पादों से हमें कैल्शियम मिलता है, जो शरीर की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मांसपेशियों के लिए ज़रूरी है। साबुत अनाज से और दाल से कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होते हैं, इसलिए ये कैंसर जैसे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और इसके अलावा बहनों, चीनी और फैट

मजबूत होती है। दूध और अन्य डेयरी उत्पादों से हमें कैल्शियम मिलता है, जो शरीर की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मांसपेशियों के लिए ज़रूरी है। साबुत अनाज से और दाल से कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होते हैं, इसलिए ये कैंसर जैसे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और इसके अलावा बहनों, चीनी और फैट पूरी तरह से ख़राब नहीं होते, बस इनकी अधिकता हमारे शरीर के लिए ख़राब होती है। तो एक संतुलित आहार में इनकी भी भूमिका है। बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हमें फैट के जरिए प्राप्त होते हैं। तो फैट और शुगर की मात्रा हमें अपने शरीर में संतुलित रखनी चाहिए। संतुलित आहार लेने से हमें अपने आप को फिट रखने में अच्छा लगता है और मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। तनाव की समस्या से भी हम दूर रहते हैं और साथ ही पर्याप्त नींद भी ज़रूरी है। बहनों, हमारे जीवन में पोषक तत्वों का, संतुलित आहार का, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम पोषण और स्वास्थ्य। आलेख डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का है और वाचन है प्रिया उपमन्यु और देवराज कृष्ण दीक्षित का।

आधुनिकता की अंधी दौड़ में आज मानव ऐसे दौड़ रहा है जैसे कि इस दौड़ में होड़ करने से किसी को कुछ खास मिल ही जाता हो। आधुनिकता की इस दौड़ में मानव खुद की परवाह किए बिना दिन रात सब कुछ भुलाकर बस दौड़ता चला जा रहा है। इस दौड़ में दौड़ना गलत नहीं है, बल्कि आधुनिकता के नाम पर खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना गलत है।

0: की सेहत गिर गई तो मैं इस तरह के जीवन को कोई जीवन नहीं मानती। देर हैज टू बी अ बैलेंस एवरीवेयर। मैं माताओं को ये बोलती हूँ, देखो आप जितना टाइम बचा रहे हैं किचन में घुसने से, सुबह का आधा घंटा बचा लिया कि मैं किचन में नहीं जा रही हूँ, मुझे उतना ही टाइम आप डॉक्टर पे फिर एक घंटा बच्चे को लेके स्पेंड करेंगे। माए सुबह चिप्स डाल रही है, जंक फूड या फ्रायम्स और ये और वो, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी टीचर की जॉब है, मुझे भी 6:30 बजे निकलना है, या मेरी दूसरी जॉब है 8 बजे निकलना है, मैं बच्चे को कैसे नाश्ता बनाकर दूं या पति के लिए क्या बनाकर छोड़ूं, पति ने भी फ्रिज से 2 ब्रेड निकाली है, बटर और चीज डाल के उसको खा के चले गए। तो देखिए कहीं पे आप गेन कर रहे हैं तो यू आर लूजिंग समवेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको हर स्फीयर में सक्सेसफुल होना, एज अ मदर, एज अ वाइफ, डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, आपको हर तरह से सक्सेसफुल होना है। एक फील्ड में सक्सेस, दूसरे फील्ड में अनसक्सेस, मैं उस इंसान को सक्सेसफुल नहीं मानती।
1: पोषण के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाने की शुरुआत मार्च 1975 में हुई थी। इसे मनाने का मकसद लोगों के खानपान और सेहत के लिए जागरूक करना था। बाद में 1980 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक हफ्ते की जगह महीने भर मनाया जाने लगा था।
2: भारत एक युवा राष्ट्र है, यही युवा भविष्य में भारत का जयगान करेंगे। इस युवा शक्ति से लेकर भारत के हर नागरिक, नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति के पोषण का ध्यान रखने और पोषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें इस अवधि के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाया जाता है।
1: नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं को अधिकतम बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने मां की असीम ममता कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि देश में स्तनपान का दायरा बढ़ाया जा सके। माँ कार्यक्रम के अंतर्गत स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों सहित डॉक्टरों, नर्सों और एएनएम के साथ आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाया गया है।
2: बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान महत्वपूर्ण है। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं की मृत्यु के 20% मामलों को कम कर देता है। नवजात शिशुओं को, जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता, उनके स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में निमोनिया से 15 गुना अधिक मृत्यु की संभावना रहती है। साथ ही स्तनपान नहीं करने वाले बच्चों में मधुमेह, मोटापा, एलर्जी, दमा आदि होने का खतरा भी रहता है। स्तनपान करने वाले बच्चों का IQ बेहतर होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, जो उसके लिए ताउम्र सुरक्षा कवच का काम करता है। बच्चे के लिए माँ के दूध की क्या अहमियत है, बता रही हैं डॉक्टर अनुराधा माहेश्वरी।
3: माँ के दूध के इतने अनगिनत फायदे हैं कि हर किसी औरत को अपने बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। और जो स्तनपान कराने से जो मानसिक, भावनात्मक और जो शारीरिक विकास होता है, वो किसी भी और चीज से हो ही नहीं सकता। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही जो दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो एक गाढ़ा, पीला और कम मात्रा में होता है। इस दूध के अनेक फायदे होते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग ये बात समझते हैं कि ये जो गाढ़ा पीला दूध है ये रुका हुआ दूध है और ये खराब है, पर इस दूध के इतने फायदे हैं कि इस दूध को बच्चे का पहला टीकाकरण भी कहा जाता है। इस दूध के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है और बहुत सारी एंटीबॉडीज और IgA होती हैं। ये सारी चीजें बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इससे बच्चे इन्फेक्शन जल्दी कैच नहीं करते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये दस्तावर भी होता है। तो जो काली रंग की पॉटी होती है बच्चों के आंतों में, जिसे हम मिकोनियम कहते हैं, तो ये कोलेस्ट्रम पिलाने से पेट को वो साफ कर देती है, जिससे ये बाहर निकल जाता है। दूसरा, माँ के दूध के अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज होती हैं और इतने सारे तत्व होते हैं कि वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध 6 महीने तक लगातार पीते हैं उन बच्चों में दमे का रोग, एलर्जीज बहुत कम मिलती हैं, उनमें कान का इन्फेक्शन भी बहुत कम होता है, उनमें दस्त भी कम मिलते हैं, उनको खांसी जुखाम

0: भारतीय समाज स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियां निरोगी रहें, इसके लिए हर वर्ष देश भर में पोषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है। स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होता है। इस बात को जानते हुए भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य वर्धक आहार है।
1: हर किसी को स्वस्थ आहार तक पहुंच मिले, चाहे उनकी आय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। शिकायत अक्सर ये कि समय नहीं मिलता। क्या ज्यादा आय कमाने के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगाना उचित है, बता रही हैं डॉक्टर रेनू डेंग।
2: एक तरफ जिंदगी में आगे बढ़ना, दूसरी तरफ आपके पास पैसा आ गया, आपके पास नाम शोहरत आ गई, लेकिन आप

0: और जो निमोनिया होता है वो भी कम होता है। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पे रहते हैं उनको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और उनको भर्ती करने की भी नौबत बहुत कम आती है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी IQ लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। उनका जो बुद्धि के विकास के लिए जो तत्वों की जरूरत पड़ती है वो सब माँ के दूध में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग भी बहुत तेज होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें डायबिटीज भी आगे चल के कम पाई जाती है। उनके अंदर ओबेसिटी मोटापा भी बहुत कम मिलता है। उनमें कुछ कुछ कैंसर्स होते हैं जो ब्लड कैंसर्स होते हैं वो भी कम मिलते हैं। जो आंतों की बीमारियां होती हैं वो भी कम मिलती हैं। एक होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसको हम सिड्स बोलते हैं, जिसमें अचानक 1 साल तक बच्चे की बिना कारण से मृत्यु हो जाती है, वो भी इन बच्चों के अंदर कम होती है जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं।
1: शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उचित पोषण बच्चों को जीवन में बढ़ने, विकास करने, सीखने, खेलने, भाग लेने और समाज में योगदान करने योग्य बनाता है। केवल माँ का दूध 6 महीने की अवस्था के आसपास शिशुओं के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए स्तनपान के साथ अन्य खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है।
2: गर्भावस्था के दौरान भी अधिकतर महिलाओं के खानपान में पोषक तत्वों की कमी रहने से शरीर में आयरन, कैल्शियम की कमी हो जाती है। 9 महीने गर्भवती महिला के खानपान का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, इससे जन्म के समय बच्चा भी हेल्दी होगा। यदि गर्भवती महिला स्वस्थ होगी तो उसके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से होगा। महिला की डाइट में जरूरी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन की कमी होगी तो माँ के साथ शिशु भी कमजोर होगा।
1: गर्भावस्था में हर प्रेग्नेंट महिला के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास सही तरीके से होता है। प्रेगनेंसी के सभी ट्राइमेस्टर में हैवी या डबल खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को डाइट में शामिल करना आवश्यक हो जाता है। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने आप स्वस्थ रहें, आपको कमजोरी या किसी भी तरह की शारीरिक समस्या ना हो, तो अपनी डाइट में कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन B12, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स आदि से भरपूर फूड्स को डाइट में अवश्य शामिल करें। हमारा भोजन कैसा हो जिससे हमें भरपूर पोषण मिल सके और हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो सके, यानी एक संतुलित आहार। क्या है ये संतुलित आहार, बता रही हैं डॉक्टर नीता जैन।
3: किसी भी बच्चे को, किसी भी एज ग्रुप को एक निश्चित मात्रा में उसको ऐसा खाना मिला जिससे उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट, ग्रोथ हो सके, जिससे कि वो स्वस्थ रहे, फिजिकली फिट रहे। ये नहीं है कि हम अच्छा महंगा खाना खाने से ही, ये नहीं कि वो पोषण आहार हम दे रहे हैं। तो बेसिकली खाना वही होना चाहिए जो आपके ट्रेडिशन, आपके कल्चर में जहाँ पे वो खाना है उसी में से हमें ढूंढना है कि हमको क्या खाना देना है जिससे कि ग्रोथ हो सके। बैलेंस डाइट में सब कुछ सम्मिलित है जिसमें कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन। अब ये हमने जो नाम लिए हैं, जैसे प्रोटीन है, दालें हैं जितनी, उसमें हमें मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी खाएंगे, रोटी चाहे वो आप गेहूं की, ज्वार, बाजरा खाएंगे, उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। फैट्स घी है, तेल है, इन सब से। और बाकी मिनरल्स, प्रचलन ये हो गया है कि लोग लो कार्ब्स लेने लग गए हैं, कि जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं आज का हमारा जो युवा वर्ग है स्पेशली, तो वो पैक्ड फूड्स होते हैं, टिंड फूड्स हैं, उसके ऊपर ज्यादा जाने की रेडीमेड प्रोटीन्स के आ रहे हैं पैक्स, वो इस्तेमाल। उधर से फिर अगर वेट इंक्रीज हो गया तो वो कहेंगे नहीं, हमको तो कीटो डाइट खानी है। तो कीटो डाइट का ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी को खोखला कर रही हैं। इसमें तो हमको ये लेना है कि जो हमारे आसपास जो खाना अवेलेबल है जिससे कि हमें बैलेंस मिल जा रहा है, रोटी, चावल, घी के लिए बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। आप पहले की साइंस में ये होता था कि नहीं, थोड़ा सा घी कम खाए नहीं तो हमारी धमनियों में जम जाएगा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन हर चीज का एक बैलेंस्ड होना चाहिए।

0: जिसमें घी भी शामिल है वो
1: जी,
0: भी जरूरी है। खाना जो भी खा रहे हैं पोषण आहार लीजिए, समय से लीजिए, इसके लिए डिसिप्लिन रखिए और खाने में हर चीज सम्मिलित होनी चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और तभी एक स्वस्थ समाज बनेगा, ये स्वस्थ देश होगा।
2: गर्भावस्था में जितना हो सके अपनी डाइट में आप ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश घर का बना खाना खाएं। आयरन इन दिनों बहुत जरूरी होता है। अक्सर महिलाओं को शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उनके साथ ही शिशु के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। आयरन के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चुकंदर, अनार, ड्राई फ्रूट्स, अनाज, अंडा, अमरूद आदि खा सकती हैं। ताजे फलों से तैयार जूस पिएं। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी अधिक पिएं। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी पीने से भी आपको कई तरह के पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होगी।
3: प्रेगनेंसी में अपने खान पान का आप जितना ध्यान देंगी उतना ही आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही से होता रहेगा। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास काफी तेजी से हो रहा होता है और उन्हें काफी एनर्जी की जरूरत भी होती है, इसीलिए उन्हें दिमागी विकास के लिए प्रोटीन व एसेंशियल फैटी एसिड के साथ कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक से भरपूर फूड्स का सेवन करवाना चाहिए। बच्चे पौष्टिक आहार खाने में आनाकानी करते हैं, इसीलिए उन्हें सैंडविच, रोल्स आदि में पोषण से भरपूर फूड्स को देना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है।
2: 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए मेटाबॉलिक चेंज होने के कारण पोषण की जरूरत बदल जाती है। इस समय हेल्दी फैट्स पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ पाचन स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने के लिए डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज से बचने के लिए भी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। और ये सब मौजूद होते हैं श्री अन्न यानी मोटे अनाजों में। क्या है मोटे अनाज यानी मिलेट्स का महत्व? माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी इसके महत्व को पहचाना और अपने उद्बोधन में बताया है।
4: मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोड़ो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। इससे भारत ही नहीं विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम जमीन होती, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा।
3: साठ साल से ज्यादा उम्र के लोगों की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, वे खाने व पचाने में काफी समस्या झेलने लगते हैं। इस दौरान सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और प्रोटीन की कमी के कारण मसल्स लॉस व फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है, इसीलिए विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सूप, दाल, सब्जी आदि का सेवन कर सकते हैं।

कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है, इसीलिए इसे बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बेहतर बाल स्वास्थ्य के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विद्यालयी शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पोषण को बढ़ावा देने के लिए सहायता और सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

पोषण और स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का था और वाचन प्रिया उपमन्यु और देवराज कृष्ण दीक्षित का था। वनिता लोक कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

मैनू चलते चलते कार्यक्रम में हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल के आधुनिकता के आज के युग में, डिजिटल युग में, महिलाएं सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और डिजिटल संचार का आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर रही हैं और लगभग सभी कर रहे हैं। इसके साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ गया है। तो सुरक्षित रहने के लिए आपको अलग-अलग पासवर्ड, ओटीपी, पिन, सीवीवी और बैंक संबंधी जानकारी किसी से भी साझा ना करें। सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को मजबूत करें। अनजान लिंक, क्यूआर और संदिग्ध ऐप पर क्लिक न करें। किसी की धमकी या ब्लैकमेलिंग पर पैसे न दें। चैट स्क्रीनशॉट जैसे मजबूत सबूत को सुरक्षित रखें। समय पर शिकायत और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने से अपराधी के खिलाफ कार्रवाई में बहुत मदद मिलती है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। आपकी सुरक्षा और बचाव बेहद ज़रूरी है आपके लिए और आपके अपनों के लिए। तो बहनों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थी वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया दीप्ति शर्मा ने। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

महबूब की मेहंदी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे महबूब फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के गीत को संगीत से संवारा है नौशाद ने।

और फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शोर फिल्म का गीत, शब्द रचना संतोष आनंद की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: our report.
1: According to IMD Ranchi, cloudy conditions with moderate to heavy rainfall and thunder showers are likely across most parts of Jharkhand today. The department has also warned of a low to moderate risk of flash floods across all districts over the next 24 hours, with waterlogging possible in saturated soils and low-lying areas. An orange alert has been issued for Garhwa, Palamu, Latehar, Lohardaga, Gumla, Simdega and West Singhbhum for heavy to very heavy rainfall. Meanwhile, in Jamshedpur, the water levels of the Kharkai and Subanrekha rivers are rising rapidly due to continuous rainfall and water being released from dams. According to the flood control cell, the Kharkai is flowing 2.52 meters above the danger mark, while the Subanrekha has also crossed the danger level. In Palamu's Husainabad, residents living along the Son River, including farmers and livestock owners, have been advised to remain alert as the river water level continues to rise. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Benchmark domestic equity indices slipped into the negative zone in the afternoon session today. The Sensex fell 43 points to 76,915, while the Nifty was down by 51 points to 24,030 when reports last came in. World number one Aryna Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2-6-4 in the first round of the U.S. Open at Arthur Ashe Stadium in New York. Top seed Sabalenka's second round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight U.S. Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के

रात शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत

0: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक

0: अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी कर

0: देखते हुए कहीं कहीं भारी बारिश वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूं। नमस्कार
1: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने। लिखा है,
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। सादर धन्यवाद।
1: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
1: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया।

0: ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
1: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
0: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
1: जी,
0: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
1: जी,
0: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
1: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
0: हे लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
1: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
0: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओं, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb.
4: Dear tree, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
4: Dear cow, do you know my name?
6: No.
4: I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
4: Dear grass, do you know my name?

0: what do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परती।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी

0: 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: How are you?
5: Happy birthday, Stephen!
4: Thank you,
5: congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yay.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे।

0: लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
1: मैं जीना चाहता हूं, तो दो साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
0: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे।

0: आइए प्रोफेसर डेनिस क्रेट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
1: प्रोफेसर डेनिस
2: जी,
1: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
2: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
1: ओह।
2: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
1: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
2: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
1: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
2: जी।
1: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
2: तो लीजिए सुनिए।
3: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं

0: मन को दिव्यांग न होने दे।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस समय अपराहन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। अब हमारी ये दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज प्रसिद्ध उर्दू और हिंदी लेखक, नाटककार और फिल्म निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी की जयंती है। इनकी जयंती 1 सितंबर को मनाई जाती है। इनका जन्म 1 सितंबर 1915 को सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1 सितंबर 1915 को सियालकोट, पंजाब में हुआ था। इनका निधन 11 नवंबर 1984 को हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत लाहौर में एक डाकघर में क्लर्क के रूप में की थी। बाद में वे दिल्ली रेडियो स्टेशन से जुड़े और फिर 1949 में मुंबई आ गए। वे प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के एक प्रमुख स्तंभ थे। उनका लघु उपन्यास एक चादर मेरी सी उर्दू और हिंदी साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है। उनका पहला कहानी संग्रह दाना ओ दाम 1940 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियों में अपने दुख मुझे दे दो और लाजवंती शामिल हैं। बेदी साहब ने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की मशहूर फिल्म आनंद और बिमल राय की ऐतिहासिक फिल्म मधुमती के संवाद लिखे थे। बतौर निर्देशक उन्होंने दस्तक, जो कि 1970 में आई थी, और फागुन, जो कि 1973 में आई थी, जैसी फिल्मों का निर्माण व निर्देशन भी किया। राजेंद्र सिंह बेदी एक हिंदी और उर्दू उपन्यासकार, निर्देशक, पटकथा लेखक और नाटककार थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सब नमन करते हैं।

और साथियों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक फनकार का सफर क्रम में हिमेश रेशमिया के गाए कुछ फिल्मी गीत।

साथियों, आज का फन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गायक कलाकार और संगीतकार हिमेश रेशमिया के गाए और संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। हिमेश रेशमिया एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार, अभिनेता और निर्माता हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1973 को हुआ था। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उनका मूल संबंध गुजरात से है। इनके पिता विपिन रेशमिया एक संगीतकार थे जिन्होंने आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत परेलाल और शंकर जयकिशन जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया। 11 वर्ष की आयु में हिमेश ने अपने बड़े भाई के निधन के बाद अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए संगीत को अपना करियर बनाया। उन्होंने साल 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर संगीत निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी फिल्म आशिक बनाया आपने के गाने के लिए फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू सिंगर का पुरस्कार जीता। उनका पहला म्यूजिक एल्बम आपका सुरूर भारतीय संगीत इतिहास के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम्स में से गिना जाता है। उन्होंने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा और 2007 में फिल्म आपका सुरूर से अभिनेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की।

साथियों, आज का फन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीतकार, संगीतकार और अभिनेता हिमेश रेशमिया के संगीतबद्ध किए और उनके गाए कुछ फिल्मी गीत। इसी के साथ ही युवावाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारी आवाज साथी सुन रहे थे अपने दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात 10:00 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा। इसमें आज आप सुनेंगे लोक कथा चोर की चतुराई। आलेख अशोक कुमार का होगा और वाचन देवेंद्र कुमार सारस्वत का। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक गीत पंडित राम स्वरूप शर्मा के स्वर में।

संध्या 7:31 से लेकर रात्रि 8:20 तक आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का।

देश गान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी तुमको ना भूल पाएंगे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग हमीर केदार और राग मिश्र गारा में सितार वादन। वादा कलाकार होंगे कार्तिक कुमार। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे अकबर हुसैन। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में लोक कथा चोर की चतुराई, आलेख अशोक कुमार को है और वाचक हैं देवेंद्र कुमार सारस्वत।
1: बहुत पुरानी बात हते कि एक चोर हतो, वो बहुत ही चतुर हतो। लोगन को कहना है कि वो आदमी की आँखन ते वो काजर तक उड़ाए सकतो। एक दिन जब चोर ने सोची कि भाई ना तो हमारा गुजारो होगो ना है जब तक हम काऊ बड़े शहर में न जाएंगे और कोई अपनो अच्छो कर्तव्य न दिखाएंगे तब तक हमारी चोरन के बीच में धाक ना जमेगी। ये सोच के वो चोर राजधानी की ओर रवाना है गो और पहुँच के वाने नगर के चक्कर लगाए शुरू कर दियो। वाने तय करो कि राजा के महल से ही अपनो काम शुरू चौन करो जाए। राजा ने रात दिन महल की रखवारी के काज बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। राजा के महल में कोई परिंदो सुना सकतो। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है जो दिन रात को समय बताए हुए काज घंटे बजायो करती। चोर ने लोहे की कछु कील इकट्ठी करी और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के संग ही वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकवा शुरू कर दे। जातियाँ बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कील लगाए दी। फिर उसे पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल है गो। जाके बाद वह खजाने में गए और वहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात चुराए लिए। अगले दिन जब चोरी को पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को जाके खबर दी। राजा बहुत हैरान भयो और साथ ही नाराजू भयो। माने मंत्री उनको आज्ञा दी कि शहर की सड़कन पर गश्त करबे वाले सिपाही की संख्या 2 गुनी कर दी जाए। अगर रात के समय किसी भी व्यक्ति को घूमते भय पाए गए तो वह चोर समझ के गिरफ्तार कर लियो जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान है रहे हो वो नागरिक यानी कि वो चोर भेष बदल के मौजूद हतो। उसे सारी योजनन की एक एक बात की पतो चल गई। माने फौरन ही ये मालूम कर लियो कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए जा रहे हैं। साधु को रूप धारण करके चोर उन सिपाही के घर गयो यानी कि उन सिपाही की 26 महिलान के उनकी पति के पास गयो और माने उनते जाए के बताई कि आज की रात आपके काज बहुत शुभ है। समरन को अलग अलग जी बात बताई और कही कि जा रात को आपके घर में कोई चोर आ सके है तो जा से बचनो आपको चाहिए। और जाके काज आपको ये करना कि घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखनी है और अगर आपके पति बाहर गए हैं तो उनकी आवाज़ में वो चोर आ के बोल सके है तो इसलिए आप आसानी से दरवाजों मत खोलियो। अगर दरवाजों खोलना पड़े तो जो व्यक्ति जैसे ही घर में घुसे चोरी वो होगा जरूर तो वाके ऊपर जल वह कोयला फेंको शुरू कर दियो। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार है गईं और अपने पतियों को उन्होंने इसकी सारी जानकारी दई नाई। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरो देते रहे। हालांकि अभी अंधेरो ही हतो लेकिन उन्हें बा समय इधर उधर कोई दिखाई ना दे रहे हो तो उन्होंने सोची कि रात को तो चोर आए ना है तो अब दिन वैसे ही निकल से आए हो तो चोर अपने घर चले जाए। जो ही वो घर पहुंचे स्त्री को संदेह भयो और उन्होंने सोची कि चोर की बताई भई कार्रवाई चोर शुरू कर दी जाए। परिणाम स्वरूप सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्री को वो विश्वास दिला पाए कि वो ही उनके असली पति हतें। उनके लिए दरवाजा खोले गए। सारे पति जो जल चुके हथकाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आए तो उन्हें ये सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित भए और उन्होंने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर के चोर को पकड़े। वह रात कोतवाल तैयार है कि शहर को पहरा देनो शुरू कियो। जब वह एक गली में जा रहे हते तो चोर ने उसे देख के कहो कि मैं चोर हूँ। कोतवाल समझे कि मजाक कर रहे हो तो वाने कही कि मजाक छोड़ो अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगो। चोर बोलो ठीक है इसमें मेरा का बिगड़ेगो और वो कोतवाल के संग काठ डालने की जगह पे पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कहा कोतवाल साहब इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे करो हो। कोतवाल ने कहा कि तुम्हारा क्या भरोसा मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ। चोर बोलो कि आपके बिना बताए तो मैं आपके संग चलो आया हूँ तो मैं भागूंगा क्यों। कोतवाल बाकी बात से राजी है गो और वो काठ में जैसे ही घुसो तो उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले ही। चोर ने झट से चाबी घुमा के काठ को ताला बंद कर

दो और कोतवाल को राम राम करके चल दियो। जाड़े की रात हती, दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरो है गो। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखो कि कोतवाल साहब काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको वाते बाहर निकाले और उन्हें फिर अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगो तो राजा को रात को सारो किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान भयो कि उसने उस रात चोर की निगरानी के काज स्वयं जायवे को निश्चय करो। चोर उस समय दरबार में मौजूद है तो उसने सारी बातें सुनी और अपनी योजना को रूप दियो। बार रात चोर ने साधु को भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे वो धुनी लगाए के बैठ गयो। राजा ने गश्त शुरू करी और दो बार साधु के सामने से गुजरे। तीसरी बार जब उधर आयो साधु से पूछी कि का इतने कोई आदमी या अजनबी आदमी को आप

0: आयो साधु से पूछी कि का इतने कोई आदमी या अजनबी आदमी को आप जातो भयो देखो। साधु ने जवाब दियो कि साहब मैं तो ध्यान लगाए भयो हो तो अगर उसके पास से कोई निकले होगो तो भाई कोई पतो ना है। यदि आप चाहो तो मेरे पास बैठ जाओ और देखते रहो कि कोई आतो जातो भयो आदमी आपको दिखे तो आप जाकू पकड़ सको हो या जो भी आप करना चाहो। राजा ने फिर अपने आप को सोचते भय कही कि चौन में यहाँ पर साधु की पोशाक पहन के और धूनी लगा के बैठ जाऊं और साधु को अपने कपड़े पहनाए के चोर की तलाश में भेज दूं। ये बात राजा के दिमाग में बस गई और वहां ने तुरंत आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार है के महल में पहुंचेगा और राजा के सोने के कमरे में जाके आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बन के चोर की पकड़वे को इंतजार करते रहे। सवेरे के कोई 4 बजे ने को आए थे, राजा ने देखो न तो साधु लौटो और न वो आदमी यानी कि वो चोर रास्ते से गुजरो, तो वहां महल में लौटवे को निश्चय करो। लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचो तो संतरी ने सोची कि राजा तो रात को ही आए गए, कोई न कोई चोर जरूर है। तो वहां राजा को महल में घुसने न दो और उन्हें पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर काऊ ने उनकी बात ना सुनी। दिन को उजारो भयो तो काल कोठरी को पहरो देवी बारे संतरी ने देखो कि भैया जामे तो राजा साहब हैं और वो मारे डर के थर थर कांपे भी लगे। वो राजा के पैरों पर गिर पड़े और राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में इकट्ठा करो। उधर चोर जो रात भर राजा के महल में सोए रहो तो सूरज की पहली किरण के फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर है वो। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचो तो बहुत ही हताश हतो। वहां ने ऐलान किया कि अगर चोर आके सामने उपस्थित है जाएगा तो वो वह माफ कर देगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करी जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के काजे वाय इनाम दियो जाएगा। चोर वहां मौजूद हतो वो फौरन ही राजा के सामने आएगा और बोले महाराज मैं वो अपराधी हूँ जिसके सबूत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबूत के रूप में वाने चुराई भई चीजें राजा की पोशाक घोड़ा सभी वापस कर दे। राजा ने वाय गांव इनाम में देत भय वादा करवायो कि वो आगे से चोरी छोड़ देगो।
1: अभी आपने जे ब्रज लोक कथा सुनी चोर की चतुराई, आलेख अशोक कुमार को हो और वाचक है देवेंद्र सारस्वत। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में एक लोकगीत स्वर पंडित रामस्वरूप शर्मा को है।

पंडित रामस्वरूप शर्मा के गाए या लोकगीत के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये थे उदित नारायण, आशा भोसले और साथी। फिल्म थी लगान। और आइए सुनते हैं हेमलता, जसपाल सिंह और साथियों को, फिल्म है अखियों के झरोकों से।

ये थे जसपाल सिंह, हेमलता और साथी। फिल्म थी अखियों के झरोकों से। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: देखो ये बरखा बूंदी मैया जो है अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखा जरूरी रहते हैं।
1: बिल्कुल ध्यान रखे के देखो, जब बरखा मौसम होते हैं तो अच्छा तो बहुत लागत है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत बीमारियों लेके आते हैं।
0: सही बात कहा। तो वो खास करके जो संक्रमण वाली बीमारी होती हैं ये बरखा मैया बहुत फैलती हैं, और कुछ अस बीमारी होती है जिनका इलाज है नहीं है।
1: देखो इनते बचे खातिन अपने जो हरहा गोरु हैं उनका नियमित जो है टीकाकरण वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर नियमित हम पंचे अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए रहा तो आवे वाले समय में या जो उन बीमारी है या जो उन इस समय जो उन समय चल रहा है वही में बीमारी नहीं हो पाती है।
0: उनमें कुछ बीमारी ऐसी है कि अगर वही हुई जाए तो अपने पशु का, जिसे हम पंच मनईन मैया कुछ बीमारी होती है कि उनका इलाज नहीं है, यू ना हो पाओ इसके खातिर हम पंच टीकाकरण कराए के उनका सुरक्षित कर सके थे।
1: हाँ बहनी, और यह एक चीज यह है देखो, जैसे एक बुखार चलत है लंगड़िया बुखार,
0: हाँ
1: वो इतना घातक हो जाते हैं कभो कभो, अगर हम समय तेरे वह क्या बचाव ना करी टीकाकरण के माध्यम से तो बहुत परेशानी हो जाते हैं। तो अगर टीकाकरण करा दो तो भैया ये सब चीजें तेरे अपने हरहा गुरुन का बचाव जा सकत है।
0: सही बात कहा। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, लंगड़िया है, खुरपका मुंहपका है, ये सब बीमारी जो है अगर लग जाती हैं तो नुकसान बहुत होता है। दूसर जो है आपो का यह कहूँ न कहूँ नुकसान उठाए पड़ते हैं।
1: हाँ, और नुकसान तबहू उठाए पड़त है जब हम पंचन के यहाँ खबरें नहीं पता चल पाती हैं।
0: सही बात कहा। तो खबरें जरूरी है।
1: आओ जान लीजिए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए योगी सरकार कृषि वानिकी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को नीति को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। कृषि वानिकी का मतलब है खेतों में फसलों के साथ उपयोगी पेड़ पौधों को भी उगाना। इससे किसानों को फसल के अलावा लकड़ी, फल और दूसरे उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है और लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत किसानों को बेहतर पौधरोपण तकनीक, बाजार और उचित मूल्य से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। यानी खेत में फसल के साथ पेड़ भी और पेड़ों से किसान की अतिरिक्त कमाई भी। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: रत्ना बहनी।
0: हाँ ओम भैया।
1: देखो ये बेहरा अपन धान की फसल खेत में खड़ी है, लहलहा रही है।
0: सही बात कहा। तो लेकिन उसके साथ साथ कीट जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है।
1: तो रत्ना बहनी आज की बातें जान लीन जाए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप भैया तेरे।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, धान की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एनपी मल्ल साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि धान की फसल में कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
7: धान की फसल में कीट मुख्य रूप से जो प्रदेश में हमारे लगते हैं उसमें दीमक, पत्ती लपेटक कीट है, फुदका है, तना बेधक है, गंधी वग है।
6: और बीमारियों में?
7: उसके अलावा जो प्रमुख बीमारियां उसमें पत्ती धब्बा रोग है, सीथ ब्लाइट है, झोंका रोग है, उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक और फाल्स स्मट।
6: जी
7: यही मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो हमारे प्रदेश में इस समय फसलों में लग रही हैं।
6: तो दीमक से शुरू करें तो दीमक की पहचान हर किसान भाई कर लेते हैं, तो इनसे नुकसान क्या होता है और इनका प्रबंधन कैसे हो?
7: असल में दीमक विशेष करके वहाँ पर इसका प्रकोप होता है जहाँ पर पानी का उथला होता है, जहाँ पर पानी एक तरह से कहिए कि जहाँ पानी का भराव नहीं होता है या पानी जल्दी उतर जाता है वहाँ पर दीमक का प्रकोप होता है। दीमक ये सफ़ेद रंग का होता है, पंखहीन होता है, असिंचित

0: परिस्थितियों में इस कीट के श्रमिक जड़ों एवं तनों को खाकर पौधों को सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग न करें और अवशेष जो है उसको अच्छी तरह से सड़ा दें, क्योंकि कच्चा जो कहिए सेलुलोज जो होता है उसी को ये खाता है। और इसके नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना विशेष करके बायोपेस्टिसाइड है, इसका 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम असड़े गोबर में मिलाकर लगभग 10 दिन बाद कई स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रखने पर उसमें वो आकर्षित होता है और वहीं पर उसको मतलब प्रभावित कर देता है। इसके अलावा अगर हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्लोरपाइरीफास 20% 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के पानी के साथ, तो इससे कीट का प्रबंधन हो जाता है।
1: देख सब हानिकारक कीटों में पत्ती लपेटक भी लगता है।
0: जी जी, इस समय पत्ती लपेटक विशेष करके 15 सितंबर तक बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें इसकी सुड़ियां पीले रंग की होती हैं तथा पत्तियों के दोनों किनारों को जोड़कर अंदर रहते हुए पत्ती हरे भाग को खुरच खुरच के खाती है, जिससे पत्तियों में सफेद रंग की पारदर्शी धारियां बन जाती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो खेत में जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे मकड़ी है, मिरिड बग है, ग्राउंड बीटल है आदि का संरक्षण करना चाहिए। और अगर प्रकोप ज्यादा हो गया है तो झरबेरी का जो बेर होता है उससे अगर उस पत्तियों को उस पर घुमा दें तो उसकी पत्तियां खुल जाती हैं और सारे कीड़े जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे और इनके प्राकृतिक शत्रु उनको खा जाएंगे। उसके अलावा हम नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल विशेष करके 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव कर दें तो इस कीट का मतलब एक तरह से रिपेलेंट एंटीपिडेंट के कारण उसमें उसका प्रकोप कम होगा। यदि हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर सारे उपाय हमारे फेल हो गए हैं, तो क्विनालफास 1.25 लीटर अथवा क्लोरपाइरीफास 1.5 लीटर, ट्राइजोफास 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल की बात चल रही है,
0: जी जी,
1: तो फुदकों से काफी नुकसान होता है।
0: विशेष करके भूरा फुदका, हरा फुदका और सफेद पीठ वाला फुदका तीन प्रमुख फुदके हैं, लेकिन इसमें भूरा फुदका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। विशेष करके वहां पर इसका प्रकोप होता है जहां पानी का भराव होता है, वहीं पर। इसके शीश और प्रौढ़ जो भूरे रंग के होते हैं, पंख वाले भी होते हैं, बिना पंख वाले भी होते हैं, और वानस्पतिक अवस्था में गोलाई में इसके प्रकोप से पौधे गोलाई में सूखते हैं जिसे हापर बर्न करते हैं
1: जी।
0: और ये मधुस्राव भी छोड़ता है जिससे पूरी फसल काली हो जाती है और बीच से गोलाई में सूखती है
1: जी।
0: इसके अलावा सफेद पीठ वाला भी फुदका होता है,
1: हाँ।
0: ये भी मतलब उसके शीश और प्रौढ़ उसके रस चूसते हैं और इससे पौधा पीला पड़ के सूख जाता है।
1: और इसी तरह से
0: हरा फुदका भी होता है, ये हरे रंग का होता है और विशेषकर प्रौढ़ के पंखों पर जो होता है इसके काले रंग के लास्ट में एक धब्बा होता है, और ये भी विशेष करके इसका शीश और प्रौढ़ रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नोक से सूखने लगती हैं।
1: डॉक्टर साहब, चाहे भूरा फुदका हो, सफेद पीठ वाला फुदका हो या हरा फुदका, इनका प्रबंधन हो कैसे?
0: सबसे पहले इसके अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं, मतलब जो उसका मुख्य फसल के अलावा जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों से मुक्त रखना है, उसी पर पलते हैं। पहले भूरे फुदके प्रकोप दशा में समय हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और प्रकोप अगर हो रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नीम ऑयल 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि 8 से 10 फुदके प्रति झुंड दिखाई दें तो इमिडाक्लोपिड 150 मिलीलीटर अथवा थायोमेथेक्सेम 100 ग्राम अथवा एस्टामिप्रिड 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
1: यानी 2.5 एकड़ में,
0: 2.5 एकड़ में यानी प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा दानेदार अगर कीटनाशी का हमें प्रयोग करना है तो 2 से 3 इंच पानी में कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 18 से 20 किलोग्राम और कार्बोफ्यूरान 20 किलोग्राम में से किसी एक रसायन को हम 2 से 3 इंच पानी में अगर हम उसको बुरकाव करें तो इस कीट का भी नियंत्रण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा जो धान में लगने वाले हानिकारक कीट हैं।
0: जी जी,
1: बीमारियां कौन कौन सी हैं जो धान की फसल की पैदावार प्रभावित कर सकती हैं?
0: इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भूरा काफी देखने को मिलता है। इसमें पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के गोल आकार के अंडाकार धब्बे बनते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर भूरा धब्बा की शिकायत है धान की फसल में तो उसका प्रबंधन हो कैसे?
0: इस रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% 2 किलोग्राम अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% गुलसनी चूर्ण 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: कहीं कहीं शीत ब्लाइट की भी शिकायत आती है।
0: शीत ब्लाइट की शिकायत वहाँ पर आती है जहाँ पर थोड़ा सा पानी का भराव होता है। इसमें देखेंगे तो इसका पत्र कुंचल यानी शीत अनियमित आकार के उस पर धब्बे बन जाते हैं जिसका किनारा गहरा भूरा और बीज का भाग हल्का भूरा होता है, और इस रोग का प्रकोप भरे पानी वाले खेतों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए यदि संभव हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और रोग के प्रकोप की दशा में कार्बेंडाजिम 50% अथवा थायोफिनेट

0: 70% घुलनशील 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी 500 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल में झोंका रोग की भी शिकायत होती है?
0: हाँ, झोंका रोग की भी शिकायत होती है। इस रोग में पत्तियों पर आंख के आकृति यानी धब्बे बन जाते हैं, जिसके बीच में राख के रंग के किनारे कत्थई रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त यह डंठलों, बालियों तथा गांठों पर भी इसके काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% घुलनशील चूर्ण 1 किलोग्राम अथवा हेक्साकोनाजोल 5% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की फसल में मिथ्या कंडुआ यानी फाल्स स्मट की समस्या आ रही है?
0: जी, विशेष करके ये देखने मिला है कि जो हाइब्रिड धान है उसमें ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। इस रोग में बाली निकलने के बाद कुछ दानों के स्थान पर पीले रंग का पाउडर भर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में यदि संभव हो तो प्रभावित बालियां को तोड़कर उसको इकट्ठा करके बाहर नष्ट कर देना चाहिए। और खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण 500 ग्राम अथवा कापर हाइड्रोक्साइड 77% WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8004376051 800-43-76-051 800-43-76-051। किसान भाई अपने खेत की निगरानी करते रहें और इसमें मित्र कीटों का भी ध्यान रखें। उसमें यदि 2 भाग शत्रु है और 1 भाग मित्र कीट है तो हमें दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग करना है उसको आखिरी विकल्प के रूप में करना चाहिए। पहले जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर NP मल्ल साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया, कार्यक्रम में यहाँ अति सब जानकारी तो मिली।
3: हाँ।
2: लेकिन गवनई कोई नहीं सुने को मिली।
3: अरे रत्ना बहनी, देखो अपने तखत बनिया बाजा धरा हो और मूंगफली खात हो, चबैना चबात हो, ख्यात के काम करके लौटो और गवनई सुने मिल जाते तो जो एकदम प्रसन्न हो जाते।
2: सही बात कहा था, तो काहे ना पंच भाई बहन इनका एक गवनई सुनवा दें जाए।
3: हाँ, तो चंद्रभूषण तिवारी भैया के स्वर में यह है विकास गीत, और सुना जाए। पंचो भाई सुने, आनंद ले।

0: ओम भैया
1: हाँ रत्ना बहनी।
0: देखो बहुत जने बढ़िया खेती कराते हैं, लगा था कि जैसे उनका देख के हमो पंच कुछ सीखी और वैसे अपन काम नीक नीक करी। तो एक एक खातिन जो है आज के किसान भैया आए हैं, वही बता रहे हैं अपने बारे में यहाँ।
1: हाँ तो उनकी कहानी जान लीजिए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं गोंडा जनपद के रुपई डीह ब्लॉक के पूरे चैन कुंवर गाँव के अनिल चंद्र पांडे भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप सफसली खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब मेरी पढ़ाई लिखाई आईटीआई के बाद पॉलीटेक्निक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। उसके बाद में फिर हम गांव गए तो देखा खेती पाती हमारी बहुत अव्यवस्थित थी, तो हमने सोचा कि नौकरी ढूंढने के बजाय क्यों ना हम खेती पाती पर अपने ध्यान दें। तो खेती पाती अपने पास पर्याप्त मात्रा में थी तो इसी से अपने गांव का भी देखरेख करते रहे, गांव वालों के साथ में रहेंगे, माता पिता का देखरेख करते रहेंगे।
2: तो ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: पहले जब हम खेती करना शुरू किए थे तो हमारे पास 7 एकड़ थी, 4 एकड़ जमीन हमने खरीदी है। अब इस वक्त हमारे पास 11 एकड़ है और लीज पर हमने लगभग 25 एकड़ जमीन ले रखी है।
2: तो कौन कौन सा फसल चक्र अपनाते हैं?
3: फसल चक्र में हम पहले गर्मी में धान लगाते हैं, धान के बाद फिर इधर आलू और गन्ना और आलू और चना, आलू और सरसों, आलू और मसूर सब लगाते हैं, साथ में सह फसली खेती करते हैं सारी।
2: और मिठास का भी उत्पादन करते हैं?
3: हाँ गन्ने का उत्पादन करते हैं, गन्ने के साथ सह फसली करते हैं और ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिसमें एक फसल दूसरे फसल को नुकसान ना करे, नुकसान के बजाय ज्यादातर फायदा करे।
2: तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, क्या तैयारी है आप?
3: शरदकालीन में गन्ना बोने के लिए हमने अपने खेत में जो अगेती वैरायटी की धान और थोड़ा समय से पहले नर्सरी डाल दी थी, कुछ खेतों में सीधी बुआई भी की थी हमने। खेत तैयार करने के बाद उसमें हम गन्ना और आलू, गन्ना और चना, गन्ना और मसूर, गन्ना और सरसों ये सब लगाएंगे।
2: यानी मुख्य फसल गन्ने की होगी, उसके साथ सह फसली खेती में आलू होगा, चना होगा, मसूर होगी, सरसों होगी।
3: डॉक्टर साहब मुख्य फसल दोनों ही हैं, उसमें अपने जो क्षमता है उन फसलों की उससे वो कम उत्पादन नहीं देती हैं। जैसे आलू हमने लगाया था, कई साल पहले से लगा रहे हैं, तो आलू में 175 कुंटल एकड़ तक उत्पादन हमने लिया है, जो आलू की उत्पादन क्षमता इतनी ही होती है, तो पूरा आलू भी उत्पादन लिया है।
2: और मिठास की फसल?
3: और गन्ना में हमने 600 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाला है, तो दोनों फसलें बराबर अपने क्षमता के अनुसार पैदा हो जा रही हैं। तो उसमें मुख्य फसल कोई नहीं, दोनों फसलें मुख्य होती हैं, दोनों उत्पादन बराबर दे जाती हैं।
2: तो जहाँ गन्ने के साथ आलू की सह फसली खेती की तैयारी है, तो बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और आलू की खुदाई और फिर गन्ने की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: धान कटने के बाद उस खेत की हम गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना दोनों डालते हैं,
2: गोबर की सड़ी खाद
3: के साथ ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना डालते हैं, जिससे हमें कीटनाशक और फफूंदी नाशक नहीं डालना पड़ता है। लगभग वही जब आलू झुलसने का टाइम आता है तब डालना पड़ता है, और हम गन्ने में और आलू में कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल बवेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं। तो जब हम जुताई करने के बाद ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना डाल देते हैं।
2: एकड़ पीछे कितना प्रयोग करते हैं?
3: एकड़ पीछे 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो बवेरिया बेसियाना डालते हैं।
2: और लगभग 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला दे?
3: हाँ 2 किलो ट्राइकोडर्मा 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में और 2 किलो बवेरिया बेसियाना 50 किलो

0: लोग सड़ी गोबर की खाद में मिला देते हैं, शाम के समय उसको डाल के फिर रात में ही जुताई कर देते हैं क्यों उसमें धूप ना लगने पाए
1: जी। और फिर गन्ने के साथ जहां आलू की सफसली खेती है तो वैरायटी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है।
0: ख्याति एक वैरायटी है और ख्याति ये वैरायटी ज्यादा टेम्परेचर में, जैसे हमें आलू अगर केवल लगाना हुआ तो देर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आलू जल्दी लगाना होता है तो टेम्परेचर सहने वाली वैरायटी होनी चाहिए। तो इसमें अगले साल मैं एक कुफरी नीलकंठ लाया था तो वो भी काफी टेम्परेचर में जमाव उसका अच्छा हुआ था, और कुफरी ख्याति जो है इसका भी काफी टेम्परेचर में जमाव अच्छा होता है, दोनों का उत्पादन भी बहुत अच्छा है।
1: और गन्ने की कौन सी प्रजाति?
0: गन्ने में तो हम अगले साल हमने 16202, 15023 और 14201 ये तीन वैरायटियां लगाई थी।
1: तो फिर बुआई में कौन कौन सी बारीकी करते हैं? दो गन्ने की लाइनों के बीच में कितनी आलू की लाइनें होती हैं?
0: दो गन्ने की लाइनों के बीच में एक लाइन आलू की लगाते हैं, लेकिन आलू थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दो लाइन लगाएं, लेकिन दो लाइन के लिए हमें मशीन लानी पड़ेगी। साल बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मशीन बनी है कुछ जगहों पर तो देख रहे हैं, अगर वो मशीन आ जाएगी तो दो लाइन करेंगे। वैसे एक लाइन लगाते हैं उत्पादन तो पूरा आता है, लेकिन साइज बड़ी हो जाती है आलू की, और 4 फीट पर गन्ने से गन्ने की दूरी और 4 फीट पर आलू से आलू की दूरी करते हैं हम।
1: तो फसल की भूख मिटाने के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं?
0: फसली में डॉक्टर साहब आलू और गन्ना दोनों अच्छी खादों वाली फसलें हैं, ज्यादा खाद चाहती हैं, तो इसमें जितना गन्ने के लिए रिकमेंडेड है उतना गन्ने में डालते हैं, जितना आलू के लिए रिकमेंडेड है उतना आलू में डालते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, दोनों की खादें अलग अलग पड़ती हैं, क्योंकि फसली में कोई भी जब आप लगाओगे तो ज्यादा खाद लेने वाली फसलें हैं, अगर उनको खाद कम कर दोगे तो उत्पादन घट जाएगा।
1: यानी दोनों की भूख मिटाने के लिए जितनी संस्तुत मात्रा है
0: जी
1: उसका प्रयोग करते हैं।
0: उसका प्रयोग करते हैं।
1: फिर खड़ी फसल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं सफसली खेती में गन्ने के साथ आलू?
0: गन्ने के साथ आलू अगर सितंबर अक्टूबर में बोते हैं तो एक हफ्ते में गन्ना जमाता है। गन्ने का शोधन जरूर करना चाहिए, गन्ने का शोधन नहीं करेंगे अगर हल्का भी पानी बरसा या ना भी बरसा तो जमाव खराब हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आलू और गन्ने के दोनों के बीजों का शोधन करें।
1: कैसे करते हैं?
0: एक दवा है हेक्साटॉप करके, तो उससे हम गन्ने के टुकड़े को उसमें डुबो लेते हैं और आलू को भी उसी में डुबो लेते हैं। और आलू और गन्ना बोने में जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो सबसे मुख्य बात यह है कि खेत जोतने के बाद तुरंत आलू बोना होता है। अगर आप खेत की जुताई किए और आलू का खेत सूख गया, ऊपर धूल आ गई, का आलू सड़ने लगेगा, तो एकदम हरा खेत होना चाहिए। तुरंत जुताई करके तुरंत आलू की बुआई शुरू कर दी जाए कि आलू के पास एकदम से नमी रहे, सूखी मिट्टी न जाए। और गन्ने में तो आलू बोने के बाद फिर गन्ना डाल के लाइन में उसमें हल्की मिट्टी गिरा देते हैं।
1: और फिर क्या मेड़ बंदी?
0: नहीं, मेड़ उसमें बनी रहती है आलू में। जब हम आलू में बोते हैं एक डोरी रखते हैं, उसी के सहारे किनारे आलू रख देते हैं। फिर हमने टंच प्लांटर एक ले रखा है जो 4 फीट पर मिट्टी दोनों तरफ से एकदम से बीज में पहुंचा देता है। उस टंच प्लांटर से उसको आलू की लाइन को बीच में करके लाइन से टंच से खींच देते हैं तो वो आलू ढक जाता है। फिर बगल जो मिट्टी गिरती है उसी के बगल मिट्टी रख, फिर एक कुंड में ट्रैक्टर चलाते हैं, जो एक नाली बनती है एक बाहर करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो हमारे केवल आलू रखने के लिए मजदूर रखना पड़ता है, मिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूर नहीं रखना पड़ता, ट्रैक्टर से चढ़ जाती है।
1: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है सफसली खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: पिछले साल हमने पेड़ी में भी फसली खेती की थी, पेड़ी काट कर उसमें बुआई करके लाइन बना दी, तो लाइन से पानी देते थे बीच में कुंड से, तो उसमें हमने पेड़ी के खेत में चना सरसों और गोभी लगाई थी, तो पेड़ी में भी हम फसली लेने लगे हैं। हम सलाह यही देंगे कि अगर किसानों को खुशहाल रहना है और खुशहाल रहने के लिए फसली खेती ही एक ऐसा उपाय है जो आपको घाटे से बचा सकती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 91-25-086-048, 9125-086-048।
1: अनिल चंद्र पांडे भैया आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रत्न बहनी।
7: हाँ भैया।
6: देखो अपन जो खेती होते वह मौसम पर आधारित होते, और अगर हम पंचन के यहाँ मौसम के हाल पता चल जाते तो हम पंचे जो अपनी खेती में आगे का काम होते वो बड़ी आसानी थे, बड़े ढंग से कर पाए थे।
7: तो वही के खातिर मौसम की जानकारी देवा दीन जाए। मौसम की जानकारी जो प्राप्त हुई है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1 सितंबर से लगाए के 7 सितंबर तक में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ स्थान पर बरखा होने की संभावना है। और जो चेतावनी की बात की जाए भैया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से लगा के 5 तारीख तक भारी से अत्यधिक भारी बरखा होने की संभावना है, और बाकी 6 और 7 तारीख का कोई चेतावनी नहीं है।
6: रत्ना बहनी, देखो पंच भाई अपन कार्यक्रम सुनत है, उनका कई स्वागत है, अपन प्रतिक्रिया बतावे खातिर वे अपन पता नोट कर लें और अपन प्रतिक्रिया दें। तो पता बताए दो।
7: तो पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 226001।
6: और जो अपने कार्यक्रम का ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। तो ऐप पर अपन प्रतिक्रिया भेजो भैया, ऐसे ही सुनत रहो कार्यक्रम किसान वाणी। अब देखो बिरिया हो रही है, पंचन से लीन जाए आज्ञा।
3: जय हिंद।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधार

आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000

0: क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। रसिन डैम का जलस्तर स्थिर रखने के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ गंगा नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को बाढ़ गंगा और बागेन नदी के किनारे, घाटों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से गंगा और वरुड़ा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। वरुड़ा के जल भरवाव से प्रभावित कुछ परिवारों को पहले ही राहत शिविरों में रखा गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, जल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम समेत संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। पीलीभीत में भारी बारिश और बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। उधर देवहा नदी की बाढ़ से कई गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए चित्रकूट और पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के आर्थिक वृद्धि को 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णायक नीतियों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा

0: कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत देश की संकल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य है जो मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में अग्रणी हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके।
1: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमईज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वह आत्मनिर्भर हो।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 UPPET के लिए पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। यह असुरक्षित स्थितियों को टालने के लिए आवश्यक होने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और टक्कर के जोखिम को काफी कम करता है। यह पहल रेलवे सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। उधर देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली एनसीआर, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कौशाम्बी के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने आज सुबह एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये थे विनोद राठौर और अलका याग्निक। फिल्म थी प्रेम ग्रंथ। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए सुनते हैं सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। इनका साथ दे रहे हैं इकबाल साबरी और साथी। फिल्म है बरसात। संगीत निर्देशक हैं नदीम श्रवण।

अभी आपने सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में ये गीत सुना। फिल्म थी बरसात, गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण। अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 2 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा उत्तर प्रदेश। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार और आप इनसे सीधे फोन पर बात कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0565-2530-135 अथवा मोबाइल नंबर है 94-1222-5575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अनुज कुमार से। याद रखिएगा, कार्यक्रम का समय रहेगा कल बुधवार 2 सितंबर 2026 को शाम 6:50। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। और कार्यक्रम में सुनते हैं अगला फिल्मी गीत। कलाकार हैं इकबाल साबरी, सुखविंदर, जयश्री और उनके साथी। फिल्म का नाम है राजकुमार। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथी। फिल्म थी कर्ज। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और बेला की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है इम्तिहान। संगीत निर्देशक हैं अनु मलिक।

अभी आप सुने थे लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। फिल्म थी शहंशाह, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे अमर उत्पल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म का नाम है तुमको ना भूल पाएंगे। पहले सुनिए इस फिल्म में अलका याग्निक और सोनू निगम को।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी तुमको ना भूल पाएंगे। इस फिल्म के संगीतकार थे डब्बू मलिक। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों

0: का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: Prime Minister further stated that
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
2: Sovereignty and territorial integrity of nations.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
5: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों

0: में 2,25 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2,873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
2: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
3: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
2: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 march following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Simi George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position

ये थे मोहम्मद अजीज, सारिका कपूर और साथी। फिल्म थी 20 साल बाद, गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए सुनते हैं नाजिया हसन की आवाज़ में एक गीत, फिल्म है कुर्बानी, गीत इंदिवर का, संगीत निर्देशक बिद्दू।

ये थे पंकज उदास और साधना सरगम। फिल्म थी मोहरा। गीत नीवर का था, संगीत निर्देशक थे विजू शाह। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: Money Talk. This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on India's strong GDP growth amidst global challenges. The participants are Dr. S.P. Sharma, economic analyst, and Rajesh Lake, anchor.
1: Good evening and welcome to Money Talk. Today's topic is extremely timely: India's strong GDP growth amidst global challenges. While major economies grapple with slowing demand, geopolitical tensions, and volatile commodity prices, India continues to stand out as the fastest-growing large economy in the world. The Prime Minister said this on India's strong GDP growth amidst global challenges.
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई 7.8% ग्रोथ देश खुशियों से भर गया है लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है दुनिया युद्ध में डूबी हुई है चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है विश्व संकटों से घिरा हुआ है सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं इन सारी चीजों को पार करते हुए उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है हमें इस गति को बनाए रखना है
1: To help us understand what's driving this resilience, we have with us Dr. S.P. Sharma, economic analyst. Dr. Sharma, a warm welcome to Money Talk.
3: Thank you, sir.
1: India's real GDP grew at 7.7% in FY25-26, and recent Q1 FY27 data shows 7.8% growth. So, Dr. Sharma, what are the key drivers behind this outperformance despite global headwinds?
3: I would say the key driver is our resilience, actually, that we have built during the last many years. So, this is not an overnight effect.

0: Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक तेजी से सेमीकंडक्टर और चिप्स पर निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन और कारों से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर जरूर मौजूद है। और इसी दिशा में भारत सरकार ने देश में ही चिप निर्माण और पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया है, जिसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के बाजार में करीब 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य दरअसल केवल भारत में चिप फैक्ट्रियां स्थापित करना ही नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, चिप उत्पादन, पैकेजिंग, अनुसंधान और प्रतिभा विकास तक एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार जैन साहब, जो आईटी एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के लिए कि कैसे हम इसे समझें कि सेमीकंडक्टर या चिप दरअसल होता क्या है और आज इसका महत्व इतना क्यों बढ़ गया है।
2: देखिए, वैसे तो सेमीकंडक्टर मशीनों के अंदर बिजली के बहाव को कंट्रोल करती है लॉजिकल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पर अगर एक आम आदमी को बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो सेमीकंडक्टर एक वो छोटी सी चिप है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो या कार हो या फोन हो, जो उस पूरे उपकरण का पूरे दिमाग की तरह काम करती है।

0: वहीं से उसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी किसी तरह का फंक्शंस है, लॉजिक्स है, सर्किट है, सब उसके अंदर वो चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को आप एक छोटी सी चिप समझ लीजिए, जो किसी भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक तरह से अंदर का दिमाग और दिल है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में आपने समझाया, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर हम सेमीकंडक्टर निकाल दें तो वो शायद काम ना करें, क्योंकि अब चीजें मैनुअल बहुत कम बच गई हैं।
0: हाँ, अब साधारण भाषा के लिए जैसे आप कहें तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोनोमस व्हीकल हैं, वो अपने आप रडार के थ्रू सड़क पे देखते हैं, गाड़ी को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ जाना है, कब टर्न लेना है, कब ब्रेक लगाना है। वो जो सारी लॉजिकल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो थिंकिंग हो रही है, जो कैलकुलेशंस चल रही है, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, या मल्टीपल सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ये छोटे से इलेक्ट्रिकल चिप्स हैं, और जिसको भारत के अंदर भी अब इसका उत्पादन हो, इसके ऊपर हमारे विकास की क्षमता हो, उसको लेकर भारत सरकार नई नीतियां बना रही है।
1: जी, एक पूरा इकोसिस्टम दरअसल भारत सरकार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, और सरकार ने सेमिकॉन 2.0 के लिए लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। कितना बड़ा फैसला है ये और कितना महत्वपूर्ण है।
0: खाली इसको हमें अर्थव्यवस्था या मतलब जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता के एंगल से नहीं देखना चाहिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जड़ा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि है आज के जमाने में सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप देखें तो शायद आज दुनिया में तेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका कार, आपके सारे बैंकिंग इकोसिस्टम, आपके यूपीआई, आपके सैटेलाइट्स, आपके डिफेंस सिस्टम्स, आपके डेटा सेंटर, आपके अपने घर के लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, टीवी, फ्रिज, सबके पीछे कोई ना कोई सेमीकंडक्टर है। और अभी पहले कुछ सालों तक पहले हम 90% चीजें सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे सेमीकॉन 2.0 में, जैसे 1 के अंदर तो हम यहाँ पे खाली असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, सरकार अभी चाह रही है कि हमें पूरी की पूरी इस सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भारत के अंदर निर्मित करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि हम यहाँ खाली असेंबलिंग नहीं करें, हम यहाँ पे डिजाइनिंग भी करें, फैब भी करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें, और पूरे विश्व में भी आगे कई देशों के अंदर एक विश्वस्त सप्लायर के तौर पर अपने आप को स्थापित करें।
1: बिल्कुल, और आपने सही कहा कि सेमिकॉन 1.0 के बाद इसीलिए सेमिकॉन 2.0 की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ये केवल पिछली योजना का विस्तार ही नहीं बल्कि इसमें भारत की रणनीति का नया और व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल है, और हम पूरी तरीके से इस पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मंत्री जी, अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में लगभग 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ये लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए किन-किन प्रमुख चुनौतियों को पार करना होगा?
0: महत्वाकांक्षी तो है, और पर जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि जो आपने आपका पिछला भी सवाल था कि इसमें मात्र सप्लाई चेन से बड़े मुद्दे नहीं, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी जुड़ी है, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो नए एआई चिप्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आप सैटेलाइट्स ले लीजिए, छोटे छोटे रडार, सब जगह जो सेमीकंडक्टर हैं बाहर से लेकर आ रहे थे ज्यादातर। तो कभी युद्ध की स्थिति में या किसी देशों से संबंध खराब होने की स्थिति में हमारे यहाँ ऐसी मतलब समस्या उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं है, उसके कारण ये सेक्टर प्रभावित ना हो, इसलिए हम उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को भारत के अंदर ही, हम अभी चाह रहे हैं कि यहीं पर निर्माण हो, ताकि हमें कभी इस तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। और चूंकि अब हम निर्माण करना ही चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर 1.0 पहले भी एक बिजनेस के एंगल से अच्छा मिशन था, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, पॉलिसीज हमारी अच्छी हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम ये चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट होने के अलावा हम एक तरह से एक एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टिंग नेशन भी बने। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा ध्याय है।
1: बिल्कुल, आपने कहा जितेंद्र जी कि सेमिकॉन 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह केवल चिप फैक्ट्री लगाने तक और असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की बात इसमें कही गई है। एक बार ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, इसको जरा एक बार और समझाएं आम लोगों की समझ के लिए।
0: देखिए, इसमें आपको खाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाली फैब की बात नहीं, आपको जो उसके लिए जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो भी हम भारत के अंदर बनाना चाह रहे हैं, जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसका निर्माण भी हम भारत में करना चाह रहे हैं, इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और ऑब्वियसली हमारे इनहाउस टैलेंट भी होगा। आपको चिप डिजाइनर भी चाहिए, है ना, उसके बाद आपको डिमांड भी चाहिए, पहले तो इंटरनल डिमांड आपके यहाँ क्रिएट हो कि आप इंपोर्ट ना करके यहीं से लें। तो इसमें अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी एक तरह से हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करके डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए लैंड एक्विजिशन चाहिए, पानी चाहिए।

0: डेटा से मतलब अल्ट्रा क्लीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाहिए, और स्किल मैन पावर के अलावा फिर सबसे बड़ी बात है, सब हो भी गया तो इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? उसके लिए फिर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए, या तो वो आप यहाँ बनाए या फिर कोई दूसरा देश आपको देने को तैयार हो, और फिर बहुत ही एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स भी चाहिए। तो इसके लिए ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये मेरे ख्याल से अगले 10 साल का विजन है, और इसमें कुछ चीजों का निर्माण यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, हम असेंबलिंग आज ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बनाऊँ, आज हिंदुस्तान में आईफोन बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि आईफोन हमारे यहाँ डिजाइन हुआ या हमने उसका वो चिप बनाई या हमने उसका किया, हम लाते हैं यहाँ पे उसको, हमारे पास हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटीज, हम लोग कर रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं उसका जो चिप का डिजाइन है, जो उसका पेटेंट है आईपी, वो भी भारत के अंदर ही उसी का निर्माण, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें जो लाई गई हैं, स्पेशलाइज जो प्लांट में लगी है, उनका निर्माण भी भारत के अंदर हो। तो पूरा का पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसका राइट है, वो पूरा का पूरा भारत के अंदर उसका निर्माण हो, यहीं पे हम इसको पूरा तो पूरा बनाए। इसलिए जब आप ये बात कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर 1.0 में मात्र आप एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, 2.0 के अंदर आप चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका सारा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट, टैलेंट की स्किलिंग, डिजाइनिंग, सब आप भारत के अंदर करना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, सरकार ने सिलिकॉन फैब के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और डिस्प्ले फैब जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया है। इसे जरा सरल भाषा में बताएं आप कि अलग अलग प्रकार के ये सेमीकंडक्टर क्या हैं और किन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी होंगे।
0: डिस्प्ले फैब का जैसे आपने उदाहरण दिया, अब आज जितने डिस्प्ले हैं टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आपकी कार की स्क्रीन के अंदर, ये सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अभी ये पैनल क्या है कि ज्यादातर बाहर से आ रहे थे, कुछ एक पैनल है जो वो बाहर की कंपनियां इंडिया में अपने उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, और उसमें फिर एक और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी टीवी कंपनियों के जो ओरिजिनल डिस्प्ले बोर्ड से पैनल है पीछे जो फैब है, वो हम ही नोएडा में बनाकर, बैंगलोर में बनाकर हम बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहां उनकी असेंबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर वो री राउट होकर पूरा का पूरा एक फिनिश टीवी इंडिया में आता है। तो अब ये हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो सेक्टर है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसके अंदर एक बेहतरीन निवेश हो, ताकि जो डिस्प्ले फैब के अंदर जो एक भारत एक तरह से मतलब विश्व के पहले या दूसरे स्थान के अंदर आ जाए। बिकॉज ये कैसा है कि हम ऑलरेडी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कई कंपनियां हमारी काम कर रही हैं, और ये कंपनियां बड़े जो ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, जो वेल नोन रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, स्पेशली कोरियन और जापानीज ब्रांड्स, उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने ब्रांड के हिसाब से, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी, और हमारे यहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का और स्किल जॉब्स का, वो यहीं पर डेवलप हो जाएगा। और यही चीजें फिर आपको देखिए डिफेंस और ऑटोमोटिव एयरोस्पेस में भी काम आने वाली है, जो आपके 5th जनरेशन एमका वगैरह के डिस्प्ले हैं, जो दूसरे डिस्प्ले हैं, वो सब यहीं पे पूरे के पूरे बन जाएंगे।
1: जी, कब तक उम्मीद है कि भारत में जो पहली फैब होगी वो शुरू हो सकती है?
0: नहीं, फैब तो ऑलरेडी कहीं लगी हुई है, ऐसा नहीं है, पर वो छोटे छोटे चीजें बना रहे हैं। अभी
1: जी
0: जो बड़ी डिस्प्ले फैब है,
1: जी
0: जिसके ऊपर अब देखिए आपको ना उसमें आप आपको एक डिस्प्ले फैब डिस्प्ले के ऊपर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको एसोसिएटेड सर्किटरी यहाँ पर बनानी है, तब जाके वो पूरा का पूरा एक इनहाउस डिस्प्ले पैनल बनेगा, उस पर इंटीग्रेटेड सेंसर भी आपको यहीं पे बनाने हैं। तो उसका काफी कुछ सामान ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, पर उसको एक कंप्लीट पैकेज, एक फर्निश फैब जो लगाने की, जो एक बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात है, चैलेंज उसका है। तो मुझे लगता है मे बी अगले 4-5 साल में ऐसी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी।
1: जी बिल्कुल, अभी हम विकसित भारत 2047 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 यानी वो साल जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, और उस वक्त हम पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र होंगे। सरकार ने योजना बनाई है ऐसी, और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है जितेंद्र जी, कि ये 2.0 जो है सेमिकॉन, इससे रोजगार के क्षेत्र में कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं, और ये अगर कहें कि जीडीपी में भी भारत के कितना ज्यादा सहयोग करने जा रही है, जिससे कि बहुत उम्मीदें हैं, आपका क्या आकलन है?
0: वो तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेक्स का फायदा यहाँ पर होने वाला है। आज 1,27,000 करोड़ का आउटले की आप बात कर रहे हैं, जो सारी हाईली स्किल्ड जॉब्स होंगी तो जनरेट होंगी, वो भी भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर बढ़ेगा, और फिर वो खाली बड़ी फैब और इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, जो उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकल कॉम्पोनेंट लगने हैं, उसके लिए जो लोकल सप्लाई चेन चाहिए वो भी हिंदुस्तान में, उनको भी पूरा का पूरा मौका बढ़ावा मिलेगा, जो इंडायरेक्टली आपके एंसिलरी जॉब्स हैं वो पूरे के पूरे बढ़ेंगे। फिर आप जब ये डिफेंस एंड टेलीकॉम में स्ट्रेटेजिक रेसिलियंस आपकी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो वो जो सेक्टर यहाँ पर चीजें बनेंगी उसमें भी आपको जॉब्स आनी है। फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं जिसमें डिजाइन से लेके पूरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब एक खाली चिप डिजाइन

0: की बात करें
1: जी
0: तो यहाँ पे मान लीजिए 100-150 स्टार्टअप में, तो उनके अंदर जो नौकरियां हैं वो साधारण नौकरियां नहीं है, वो हाई स्किल नौकरियां होंगी। तो आप भारत को आने वाले समय के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो चैलेंज आपको लग रहा है कि जो AI से आप जॉब लॉस वगैरह की बातें कर रहे हैं, वो हाईली स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन जॉब्स का नया रिप्लेसमेंट वगैरह आएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगले 5-6 साल के अंदर करीबन 80,000 रुपए की नौकरियां खाली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर, 80,000 नौकरियां यहाँ पर जो नई नौकरियां हैं वो आएंगी।
1: बिल्कुल
0: हो सकता है थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए, मगर अगर आप पूरे दशक के अंदर एंड में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्टर लाखों जॉब्स करेगा। इसमें खाली हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं है, फिर वो जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल जॉब्स भी आती हैं, लो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मिड स्किल्ड, वो सब मतलब जो है पूरी की पूरी एक नई इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी है।
1: सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है बहुत बड़े पैमाने पर, इसका मतलब है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने जा रहा है। दरअसल भारत अब केवल दुनिया के लिए बाजार या तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध कराने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की डिजिटल दुनिया को चलाने वाली चिप्स की वैश्विक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है, और सेमिकॉन 2.0 इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार जैन जी, IT विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी वाराणसी की है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम खेल दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ता। पहली भेंट वार्ता का विषय है शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। जानकारी देंगे राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह। साथ ही आप सुनेंगे एक और भेंट वार्ता जिसका विषय होगा क्या है रेस वॉकिंग। जानकारी देंगी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव। तो कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय है शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से बातचीत कर रहे हैं चंदन सिंह।
2: श्रोताओं नमस्कार, निशानेबाजी यानी शूटिंग एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार का फैसला मात्र मिलीमीटर के अंतर से तय होता है। यह खेल एकाग्रता का है, शारीरिक स्थिरता का है और मानसिक दृढ़ता का है। और पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और विश्व कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराकर देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन एक आम खिलाड़ी इस खेल को कैसे समझ सकता है और राष्ट्रीय स्तर का या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज कैसे बन सकता है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सत्यम सिंह जी। आप एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रहे हैं, साथ ही साथ आप एक शूटिंग कोच भी रहे हैं और वर्तमान में भारतीय टीम में चयन हेतु आप ट्रायल दे रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये शूटिंग या निशानेबाजी जो खेल है ये किस तरह की ये प्रतिस्पर्धा है, ये खेल क्या है?

0: इसके बारे में बताएं।
1: प्रतिस्पर्धी खेल निशानेबाजी पूरी तरह से एक सटीक अनुशासन है और आपके सार्थक निर्णय का ये प्रमाण है कि अगर आपका निर्णय अनुशासित है तो आप सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य वेधक बन सकते हैं।
0: जी
1: और एक चीज इसमें और भी हम जोड़ना चाहते हैं कि इसमें नियंत्रण और अनुशासन ये दो चीज ऐसी है जो कि मुख्य रूप से इसका अनुपालन करते हैं।
0: जी
1: जी
0: अच्छा, निशानेबाजी की अगर हम बात करें या जिसे शूटिंग कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: सर, मुख्य रूप से निशानेबाजी में तीन तरह की प्रतिस्पर्धा होती है,
0: जी
1: एक राइफल, दूसरी पिस्टल और तीसरी शॉटगन, जिसे हम अपने भाषा में बंदूक भी कहते हैं। और इन तीनों प्रतिस्पर्धा में, जैसे कि पिस्टल में हमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज में मैचेस होते हैं,
0: जी
1: जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड 50 मीटर फ्री पिस्टल एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल।
0: जी
1: और उसी तरह से राइफल वर्ग में 10 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल प्रोन, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन और 300 मीटर के लिए इस वर्ग में हमारी बिग बोर की प्रतियोगिता होती है, जो कि 300 मीटर की दूरी से खेली जाती है। उसमें भी दो इवेंट होते हैं, एक 50 मीटर, एक 300 मीटर प्रोन और 300 मीटर थ्री पोजिशन।
0: जी अच्छा, जो मुख्य जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं, जैसे आपने 10 मीटर की बात की एंड देन फिर बाद में आपने और अन्य प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बताया, आपने कुछ कंपटीशन के बारे में बताया, तो वो कैसी होती हैं, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
1: देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे इस खेल में प्रतिस्पर्धाओं को अलग अलग चैंपियनशिप, अलग अलग प्रतियोगिताओं के हिसाब से अलग अलग वर्ग के खेल को इसमें रखा गया है।
0: जी
1: जैसे कि चूंकि यह हमारा जो खेल है शूटिंग, यह 1907 में इसकी हमारे फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1897 से यह ओलंपिक में खेला जा रहा है। ओलंपिक
0: जी
1: इसमें मुख्य रूप से पहले जितने भी कैटेगरीज मैंने बताई, जितने भी खेल मैंने बताए हैं, वो सारे होते थे। बट अभी कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं और उसमें क्या हुआ है कि कुछ बाकी सारे वर्ग को हटा करके मुख्यतः सारे कैटेगरीज में से एक दो इवेंट्स को ही सिर्फ ओलंपिक में जगह दिया गया है। जैसे कि पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल मेन, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल पिस्टल वुमेन एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन। ये चार कैटेगरीज हमारी पिस्टल में हैं। और राइफल में 10 मीटर एयर राइफल मेन, 10 मीटर एयर राइफल वुमेन,
0: जी
1: 50 मीटर थ्री पोजिशन मेन, 50 मीटर थ्री पोजिशन वुमेन,
0: जी
1: ये हमारी राइफल की चार कैटेगरीज हैं जो कि हम ओलंपिक में खेलते हैं। और शॉर्ट गन में हमारे ट्रैप है, ट्रैप मेन एंड ट्रैप वुमेन,
0: जी
1: स्किट मेन एंड स्किट वुमेन।
0: जी मैं यहां पे आपको रोकना चाहूंगा। आपने ओलंपिक की बात की और जब हम निशानेबाजी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हम जान पाते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों पे या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर खेल हो रहा है तो वहां से ही हम समझ पाते हैं कि निशानेबाजी में ये प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो आपने जैसे 10 मीटर के बारे में बताया एंड देन 25 मीटर के बारे में आपने बताया, फिर आपने ट्रैप के बारे में बताया, ऐसा इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में क्या करना होता है या जो और भी प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या करना होता है, उनका नाम के साथ आप बता दें।
1: सर देखिए, 10 मीटर प्रतियोगिता जो है यह मात्र इवेंट हमारी है,
0: जी
1: जिसमें कि मदर इवेंट हम इसको कहते हैं। बेसिक सारी यहीं से स्टार्ट होती हैं
0: जी
1: और जनरली जो भी शूटिंग स्टार्ट करता है वो 10 मीटर पिस्टल या 10 मीटर राइफल से ही स्टार्ट करता है।
0: जी
1: और इसमें होता क्या है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में हमारी दूरी जो होती है वो हमारे हमसे 10 मीटर दूरी पे टारगेट को रखा जाता है। जो एयर पिस्टल में जो टारगेट जिसे हम जिस लक्ष्य को हमें भेदना होता है वो 0.5 मिलीमीटर के लिए हम उस लक्ष्य को भेदते हैं वो
0: अच्छा
1: होता है। और
0: जी
1: राइफल में 0.1 मिलीमीटर पे हमारा टारगेट होता है कि
0: जी
1: उस टारगेट को हमें 1 घंटे 15 मिनट में 60 बार एक ही जगह पे हिट करना होता है, उसका
0: अच्छा
1: अभ्यास हम करते हैं।
0: जी
1: ये एयर पिस्टल का हो गया। ऐसे ही 25 मीटर में दूरी 25 मीटर हो जाती है। जो हमारा कैलिबर है, जो हमारा एम्युनिशन का कैलिबर है, वो चेंज हो जाता है। ईयर पिस्टल में 0.177 बोर का कैलिबर का हम लोग यूज करते हैं पैलेट्स,
0: जी
1: और 25 मीटर पिस्टल में 0.22 बोर का एम्युनिशन हम लोग यूज करते हैं, जिसकी की मारक संख्या ज्यादा होती है तो, और उसकी दूरी भी 25 मीटर हो जाती है। और इसमें आपके जो शस्त्र हैं वो भी बदल जाते हैं,
0: जी
1: वो अलग तरीके के शस्त्र हो जाते हैं। इसमें हम लोग मैगजीन भी यूज करते हैं इस
0: जी
1: इवेंट में।
0: जी
1: और इसके जो टारगेट होते हैं इसमें हम लोग 0.5 एमएम से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का।

0: हमारा लक्ष्य होता है, जैसे कि हमें इसकी टाइमिंग अलग होती है, इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें हमें उसको भेजना होता है
1: जी
0: जी। और ट्रैप शूटिंग बेसिकली सर ये आउटडोर शूटिंग है जी। जनरली हम लोग अगर देखा जाए तो जो भी हमारे ओलंपिक्स या बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें जो हमारा क्वालिफिकेशन राउंड होता है या जो भी हमारा फाइनल राउंड होता है, जनरली ये इंडोर खेला जाता है, 10 मीटर, 25 मीटर एंड 50 मीटर। लेकिन जो ट्रैप है ये प्रॉपर हमारा आउटसाइड गेम है। और इसमें क्या होता है कि दो तरह के इवेंट होते हैं, एक ट्रैप होता है, एक डबल ट्रैप होता है। पहले दोनों कंसीडर किया जाता था, बट अभी रिसेंट चेंजेस में डबल ट्रैप को हमारे बाकी सभी चैंपियनशिप से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। और इवेंचुअली अभी कुछ दिनों के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर से ये नेशनल में भी ये हमारा डबल ट्रैप इवेंट नहीं रहेगा। बट ट्रैप में दो इवेंट फिलहाल खेले जाते हैं, ट्रैप और डबल ट्रैप।
1: जी
0: ट्रैप और डबल ट्रैप में बेसिक डिफरेंस ये है कि हम ट्रैप में हमें दो शॉट मिलते हैं एक टारगेट को हिट करने के लिए। जो हमारी क्ले बर्ड्स होती हैं वो एक मशीन के थ्रू एक निश्चित स्पीड में एक निश्चित दिशा में वो जाती हैं, और जिनकी दूरी मतलब टारगेट हम जहां तक अचीव कर सकते हैं वो लमसम 30 से 40 मीटर, 50 मीटर इस तरह से तक हम उसको चेज कर सकते हैं। और डबल ट्रैप में क्या होता है कि हमें दो टारगेट को हिट करना होता है, दो शॉट मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रैप और डबल ट्रैप में। ये गेम क्या होता है, इसमें हम शॉटगन यूज करते हैं इसको खेलने के लिए। इसमें पांच प्लेटफॉर्म बने होते हैं, बेसिकली होते 6 प्लेटफॉर्म हैं, पांच हमारे फ्रंट पे होते हैं और जो छठवां प्लेटफॉर्म होता है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म के जस्ट बिहाइंड पीछे होता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें एक साथ में इसमें 6 लोग प्रतिभाग करते हैं, और जब हमारा पहला खिलाड़ी शूट करेगा तो वो अपने प्लेटफॉर्म से हट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और जो छठवां प्लेयर रहेगा वो पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसी तरह से रोटेशन होता रहता है, और हमें हर एक प्लेटफॉर्म से मतलब पांच प्लेटफॉर्म से फायरिंग करनी होती है, छठवां प्लेटफॉर्म हमारा वेटिंग एरिया होता है,
1: जी
0: और पांच अलग अलग जगह से खड़े होकर के हमें शॉट लेना होता है, टारगेट को हिट करना होता है। और डबल ट्रैप में भी सेम प्रोसेस होता है, बस उसमें हमें दो चांस मिलते हैं ट्रैप में, और इसमें हमें दो शॉट के लिए दो टारगेट होते हैं। तो ये हमारा ट्रैप और डबल ट्रैप होगा।
1: तो आपने जो कंपटीशंस बताए, जो भी प्रतिस्पर्धाएं आपने बताई हैं, उसमें आपने बताया कि 10 मीटर मेल के लिए होता है और 10 मीटर फीमेल के लिए होता है, विमेन का जो होता है कैटेगरी होता है। अच्छा, लगाना तो सिर्फ निशाना ही है, तो फिर दो कैटेगरी क्यों रखी गई है? क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा मस्कुलिन पावर यूज होना नहीं है, तो महिलाओं में और पुरुषों में ये अलगाव क्यों किया गया है, इसके बारे में बता दें।
0: सर बेसिकली ये डिफरेंस बहुत सारी चीजों को देखते हुए किया गया है, जैसे कि जो हमारी महिलाओं का क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो हम लोगों से कम होता है और पुरुषों का ज्यादा होता है। चूंकि ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो यूज होती ही है,
1: जी
0: और पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि थोड़ा सा गर्ल्स को, जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको इसमें मोटिवेट करें, ज्यादा मौका मिल पाए और उनकी एक अलग कैटेगरी हो। तो इसमें हमारा एक मिक्स इवेंट भी कराया जाता है जिसमें कि दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में रिजल्ट बनता है, साथ में हम उनका मेडल लेते हैं, तो ये भी है हमारे यहाँ है। बट चूंकि हर जगह पे ऐसा है इस वजह से इस गेम में भी मेल फीमेल का वो किया गया है।
1: जी अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैं कि एक सफल शूटर बनने के लिए किस किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ती है?
0: सर सफल शूटर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप सही समय पे और सही जगह पे ट्रेनिंग लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग लेना, और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग को मतलब शुरू में बहुत प्रॉपर टाइम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, बट बाद में वो जा करके उस चीज को फिर एज अ हॉबी ट्रीट करने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। शूटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले शूटिंग खेल के बारे में जानें, अन्यथा इसकी सिर्फ खूबसूरती को और इसमें सिर्फ इसके मतलब अच्छी चीजों को, कि जैसे हमें फिल्मों में शूटिंग होती है उस तरह से कुछ इमेजिन करके ना जाएं, क्योंकि यह इस गेम में पूरी तरीके से आपकी सभी चीजों का परीक्षा होता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस गेम में नहीं चाहते हुए भी इतना आप इकोनॉमिकल ये गेम नहीं है, आपको उस तरह से माइंडसेट बना करके इस गेम को स्टार्ट करना चाहिए। और एक अच्छे कोच, एक अच्छे गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो बेहतर करेंगे आप और अच्छा करेंगे।
1: जी अच्छा, जो युवा इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचने के लिए किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है?
0: जो भी युवा इस खेल को खेलना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो

0: किसी भी सरकारी क्लब या किसी भी एकेडमी पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, या किसी भी सीनियर खिलाड़ी से वो मिल सकते हैं, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें बहुत ही मामूली प्रक्रिया होती है, जिसमें कि हम एक फॉर्म हमारा होता है एसोसिएशन का, उसे हमें फिलअप करना होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब हम वहाँ रजिस्टर करते हैं खुद को, तो वो 600 रुपये उसकी उसका शुल्क होता है, 590 रुपये, उसे हम फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे दो एसोसिएशन है, एक स्टेट एसोसिएशन है और एक मेरा नेशनल एसोसिएशन है, दोनों जगह आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जितने भी कंपटीशन आते हैं, तो जब आप जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पोर्टल पे उन सारे कंपटीशंस की सूची दी जाती है कि कब कौन सा कंपटीशन होने वाला है, और उसके बाद उसमें आप जिस भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अपनी एंट्री कर करके और आप सीधे जाकर के प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप जो निशानेबाजी जो खेल है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोताओं से निशानेबाजी के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग भी निशानेबाजी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं या खेलते हैं, आप सभी लोग इस गेम को सिर्फ इसलिए ना खेलें कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक या इस तरह से खेलना है। इसके बहुत सारे और भी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है, जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जाकर रुक जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक मन में ये होता है कि हमने ये गेम क्यों चुना या अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिक समस्या आती है और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ये समस्याएं आती हैं आगे चल के, जो भी युवा हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप इसके, अब हमारी जो शूटिंग है ये एक पीएचडी एस एस एचडी कोर्स में भी इसका इसमें आप उपयोगिता है, और ये कोर्स एज अ मतलब आप कर सकते हैं, इससे पीएचडी कर सकते हैं, और दूसरा मतलब इससे आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप कोच भी बन सकते हैं, आप ज्यूरी बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप बहुत सारे इसमें बहुत स्कोप है।
1: जी
0: तो आप अगर एज अ खिलाड़ी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके अदर सेगमेंट में जाकर के उसमें अपना करियर बना सकते हैं।
1: सत्यम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निशानेबाजी से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। इस विषय पर राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से चंदन सिंह की बातचीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है एक और भेंट वार्ता, जिसका विषय है क्या है रेस वॉकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से बातचीत की है चंदन सिंह ने।
1: श्रोताओं, मैदान चाहे क्रिकेट का हो या फिर मुक्केबाजी की रिंग हो या फिर एथलेटिक्स का ट्रैक, खेल सिर्फ हमारी शारीरिक परीक्षा ही नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे अनुशासन की भी परीक्षा लेते हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रतिस्पर्धा की, जहां पे सख्त नियमों के अंदर ही आपको अपनी गति और अपने संतुलन का परिचय देना होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा की। तो क्या है रेस वॉकिंग और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रानी यादव जी। आप अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हैं, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका।
3: नमस्कार सभी को मेरा। मुझे बहुत खुशी हुई जो आपने ऐसा मंच हमको दिया।
1: जी, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं आप रेस वॉकिंग को अपने करियर अपना कैसे बनाया।
3: पहले तो मेरा स्टार्टिंग गेम जो था वो हैंडबॉल था, और हम लोगों का स्टार्टिंग स्पोर्ट्स का स्कूल से स्टार्ट हुआ। वहाँ हमारी गेम टीचर थी, अब नहीं है हम लोगों के बीच में, तो वो हम लोगों को हर गेम के लिए लेकर के जाते थे। तो पहले हमें पता नहीं था एथलेटिक्स में कितने इवेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें, दिन प्रतिदिन हम लोगों ने अच्छा भी किया, प्लस उसके साथ साथ अपनी जागरूकता को भी इंक्रीज किया कि इवेंट है तो कैसे है, कैसे होता है, कहाँ होता है। और चूंकि हम लोग स्कूल लेवल पे जब खेलते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें ओपन टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं, कहाँ जाना है, कैसे एंट्री करानी है, इसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है तो कहाँ जाना है,
1: जी।
3: क्योंकि एक स्कूल का लाइन और स्पोर्ट्स का लाइन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो स्कूल में जब सीजन आता है कि इंटर कॉलेज के नेशनल होने हैं, स्टेट होने हैं, तो आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने स्कूल के लिए मेडल जीत करके लाना है, लेकिन उसी बीच में कुछ कुछ

0: कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जाते हैं कि मतलब वो ऐसे टाइम पास में भी एक्चुअल खिलाड़ी बन जाते हैं। तो हमने कोई मतलब घर से ऐसा सोच के नहीं किया कि हमें स्पोर्ट्स करना ही है, और जब हम करना भी शुरू कर दिए तो हमें जब मेडल आना शुरू हो गया
1: जी
0: सन 2000 से हमने अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर दिया था। एथलेटिक्स में मैं 2002-2003 के आसपास आई, तो सिगरा स्टेडियम में हमारे एक सीनियर थे जो ट्रेनिंग किया करते थे, उनको देख करके मतलब हम लोग जब स्टेडियम में जाते तो हैंडबॉल में क्या था कि शूटिंग पासिंग करने के बाद बिठा देते थे साइड पे कि आप गेम देखो, स्किल देखो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर हमें लगता था यार हम यहाँ आते तो हैं, इतना टाइम देते तो हैं, आके बैठने के लिए तो नहीं आते, तो हमें अपने इस टाइम को भी यूज करना चाहिए। तो एक दिन गए हम, बोले भैया ऐसे ऐसे हम ये इवेंट करना चाहते हैं, चूंकि हमको और इवेंट के बारे में नॉलेज नहीं था कि एथलेटिक्स के अंडर में इतने इवेंट आते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट ये हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मतलब इसमें बहुत मेहनत है, कर लोगी? हाँ, मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगी। तो उस टाइम 116 में 3 किलोमीटर होती थी,
1: जी
0: तो फर्स्ट टाइम मैंने बात करके फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेडल भी आने शुरू हो गए थे। तो पहला मेरा नेशनल में 2004 में मेरा मेडल था।
1: जी यहां पे मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि आपने रेस वॉकिंग में कौन कौन से कंपटीशन में आपने भाग लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, वो भी उसके बारे में बता दें आप।
0: मैंने 2004 से लेकर के 2008 तक जूनियर कंपटीशन जितने भी होते थे, एक साल में 3 से 4 कंपटीशन होते हैं, तो वो 2004 से लेके 2008 तक सारे कंपटीशन में मेरे गोल्ड थे। 2008, 9, 10 कंटिन्यूअस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं,
1: जी
0: और मेरे एजुकेशन इधर विद्यापीठ से थी। प्लस उसके साथ 2009 में सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट
1: जी
0: हुई मैं। तो मेरा मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी किसी हॉस्टल और किसी बड़े कोच के उससे नहीं था, अपना मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, देखते गए जहाँ ट्रेनिंग अच्छा होता गया। तो सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मिला सीनियर्स का इसलिए कि वो लोग ट्रेनिंग करते थे, उनसे अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग बात करते थे, तो वो मतलब जो जूनियर बच्चे उनके पास थे या जूनियर बच्चे ट्रेनिंग करते थे, तो उनके साथ हमें भी जगह देते,
1: जी
0: कहते चलो करने में इंटरेस्टेड है लड़की तो उसको भी जगह देना है इधर करने के लिए। तो उसका बेनिफिट यह होता था ना कि एक लड़के के साथ अगर आप प्रैक्टिस कॉम्पीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा होगा।
1: जी
0: 2010 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में 6th पोजीशन था, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप भी मैंने पार्टिसिपेट किया, रशिया में, जापान में, चाइना में। बाकी सीनियर जूनियर के मिला करके लगभग 45-50 के एवम में मेडल होंगे हमारे।
1: जी अच्छा, हम एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो एथलेटिक्स में विभिन्न तरह के कंपटीशंस हैं, अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसमें रनिंग आ जाता है, फिर और भी तरह के इवेंट्स होते हैं। तो ये रेस वॉकिंग जो होता है ये रनिंग से कितना अलग है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: पहले तो वॉकिंग रेस के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या,
1: जी
0: और वो भी एक मतलब रनिंग टाइप सा ही है, लेकिन उसमें रनिंग में और वॉकिंग में इतना अंतर है, जैसे कि रनिंग जो करते हैं हम टो पे करते हैं और जो वॉकिंग करते हैं हम हील बाल टो करते हैं। मतलब वो इसकी लैंडिंग होती है कि हील पहले लगाएंगे फिर बाल से टो होते हुए, ये ऐसे चलता रहता है।
1: जी
0: इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए और लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वॉकिंग करने के टाइम में एक पैर हमेशा ग्राउंड के टच में होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड का टच छोड़ता है तो कि आप रनिंग कर रहे हो,
1: अच्छा
0: तो ये अंतर होता है। स्पीड वैसी ही होती है क्योंकि भाई रनर भी ट्रेनिंग कर रहा है और वॉकर भी ट्रेनिंग कर रहा है, तो जब किसी चीज पे हम अभ्यासरत रहते हैं तो वो बढ़ती है, घटती तो है नहीं।
1: अच्छा जी। अच्छा, इसके नियम भी हमारे श्रोताओं को आप बता दें जल्दी जल्दी में कि जो रेस वॉकिंग कंपटीशन है इसके क्या क्या नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
0: इसमें ये है कि जैसे कि नी बैंड नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से

फॉल होता है। अगर रेस हो रहा है तो इसके टेक्निकल जज होते हैं जो देखते हैं। ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो रनिंग कर रहा है कि वॉकिंग कर रहा है, लेकिन कई कई क्लियरली भी रनिंग करते हैं वो तो एक आम जनता पकड़ सकती है, लेकिन जो इसका टेक्निकल पॉइंट होता है वो टेक्निकल जज ही देख सकते हैं। तो इसका भी एक होता है कि आपको जोन बना देते हैं, पेनाल्टी जोन, वो

0: भी बना होता है, उसको इधर उधर से कहीं से भी नहीं कि आ गए और कहीं से भी चले गए, एक प्रॉपर उसका पाथवे बनाया होता है, वहां से ही जाना है और उधर से ही निकलना है। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है, चीफ जज उधर से सिग्नल देता है, फिर खिलाड़ी निकल के फिर शुरू कर देता है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि रेस कर रहे हैं और ट्रैक में ही आपको वार्निंग मिलती थी, और उसके बाद अगर 3 वार्निंग आ गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाता था बंदा। अब चांस मिलता है खिलाड़ी को।
1: अच्छा, ये जब किसी को चेतावनी दी जाती है तो क्या ये संभव है कि ये मान लेना चाहिए कि वो खिलाड़ी जो है वो चेतावनी देने के बाद जब वहां पे इतनी देर तक वो खड़े रहेगा तो उसके बाद वो जीत नहीं सकता है?
0: नहीं, अभी जैसे एकाएक चेतावनी तो देते नहीं है, जैसे उसको कॉशन दिखाएंगे, नी बैंड का दिखाएंगे, या जो भी फॉल्ट हो रहा है उसका पहले कॉशन दिखाएंगे, तुरंत दिखा करके नहीं करते। जैसे येलो कार्ड देंगे, 2 येलो कार्ड के बाद एक रेड कार्ड देते हैं, तो वो जब 3 रेड कार्ड आता है तब उसको पेनाल्टी जोन में जाना पड़ता है। और उसमें भी जो पेनाल्टी जोन में आ गए वो तो खिलाड़ी के जीवन पंती पे है। जैसे कभी कभी कोई खिलाड़ी गिर के भी उठ के अच्छा चलता है, तो वैसे ही कभी कभी लीड पे है प्लेयर, 1 राउंड की लीड दिया हुआ है सेकंड वाले को, तो ज्यादा से ज्यादा आधे घर राउंड का लीड कवर हो जाता है, आधे का बचा रहता है, तो वो आधे पर से भी रेस को कंप्लीट करता है। और कोई कोई खिलाड़ी होते हैं नर्वस हो के वहीं रेस भी छोड़ देते हैं कि अब तो बहुत पीछे हो गए।
1: अच्छा, ये जो रेस वॉकिंग जो प्रतिस्पर्धा है, इसके लिए रोजाना क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या दिनचर्या होती है, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, इसके बारे में बताएं?
0: अगर इसके ट्रेनिंग के पर्पज से आप जाएंगे तो ट्रेनिंग तो इसकी कम से कम, अगर आप 42 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं या 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं तो ऑब्वियस जो भी कोच होता है वो 20 किलोमीटर का टारगेट रख के चलता है प्रैक्टिस में। और ये नहीं है कि सुबह शाम केवल 20 किलोमीटर भगा रहे हैं, उसका हफ्ते भर का एक शेड्यूल होता है, और पूरे हफ्ते भर में हमको लग रहा है कि 10 किलोमीटर वाले को 200 से 250 किलोमीटर का एवरेज निकाल देते हैं। एक पीक पे रेस भागने के लिए एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि ये नहीं है कि 10 किलोमीटर है तो हम उसको एवरेज कम कराएंगे या डिस्टेंस 10 किलोमीटर के हिसाब से कराएंगे। अगर 10 किलोमीटर हमें भगाना है एथलीट को एक टॉप लेवल पे, तो उसके लिए 250 300, अब जैसा वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं ऑफ सीजन से लेके फुल सीजन और कंपटीशन पीरियड, मतलब पूरे 1 साल का वो उस हिसाब से प्रोग्राम अपना बना करके कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है, उसी में हमारी पावर ट्रेनिंग होती है, रिहैब होता है, मसाज होता है, सोना बात होता है, तो हमको विदाउट ट्रेनिंग ब्रेक किए हुए ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती है।
1: जी
0: तो जैसे 5 सेशन ट्रेनिंग हो गई, मंडे मॉर्निंग इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग, फिर वेनेसडे मॉर्निंग, और वेनेसडे इवनिंग में रेस्ट देंगे, क्योंकि 5 सेशन के बाद बॉडी में इतनी फटीग हो जाती है कि उसको एक रेस्ट चाहिए ही चाहिए।
1: जी चलते चलते हमारे जो युवा खिलाड़ी रेस वॉकिंग कर रहे हैं और उसमें अपना करियर तलाश रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: को भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी, निरंतर अभ्यास करते रहने से सफलता जरूर मिलती है, लेकिन आप बंद करके प्रयास मत करिए। पता चला कि हमारी कैपेसिटी 10th के क्लास की है और हम 5th क्लास वाले टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए समय के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। कोचिंग पे जो आज की युवा पीढ़ी है बहुत शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ढूंढती है, मतलब एथलेटिक्स एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है गेम का कि कम से कम 8 साल 9 साल जब ट्रेनिंग एज होती है, बायोलॉजिकल एज नहीं बता रही हूँ, ट्रेनिंग एज, जब इतना अगर आप कंटिन्यूअस ईमानदारी से कर रहे हैं तो 8 साल 9 साल जा करके आप नेशनल में बेस्ट ऑफ 4 में, बेस्ट ऑफ 3 में, बेस्ट ऑफ 2 में घुसना शुरू कर देते हैं।
1: रानी यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और रेस वॉकिंग से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से चंदन सिंह की ये बातचीत अभी आप सुन रहे थे, जिसका विषय था क्या है रेस वॉकिंग। इसी के साथ कार्यक्रम खेल दर्पण संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में वाचन आकांक्षा

0: शाह सिंह का था, संपादन और प्रस्तुति चंदन सिंह।
1: राज्य स्तरीय प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग हमीर केदार और राग मिश्रगारा में सितार वादन। वादक कलाकार हैं कार्तिक कुमार। तबले पर इनके साथ संगत की है अकबर हुसैन ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने राग मिश्रगारा में सितार वादन सुना। वादक कलाकार थे कार्तिक कुमार, तबले पर इनके साथ संगत की अकबर हुसैन ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की

0: खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
1: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in the areas of security, connectivity and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from August 31 to September 1. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, PMDDKY, and the progress of Watershed Development Component, WDC-PMKSY of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme, in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district-level performance for farmers.